एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के बैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है, थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के 4थे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ...103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं।

चिंतन। यह संसार जीवन मृत्यु का चक्र है और आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। यह भौतिक शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा का अस्तित्व सदा बना रहता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। आत्मा को परमात्मा का ही अंश माना गया है, जो सभी बंधनों से मुक्त और शुद्ध है। इस आत्मज्ञान को समझकर मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन में सच्ची मानसिक शांति को प्राप्त करता है और साथ ही प्रभु भक्ति में भी लीन हो जाता है।

ईश्वर का नाम वह नाव है जो अशांत मन को शांति के किनारे में लगा देती है। जैसे पानी से प्यास बुझती है, वैसे ही प्रभु के नाम स्मरण से भटकते मन को परम शांति मिलती है।

प्रभु की पावन महिमा इस जग में सबसे निराली और अपरंपार है, जो डूबती नैया को पल भर में पार लगा देती है। उनके नाम के केवल स्मरण मात्र से ही जीवन के सारे घोर संकट, भय और बड़े से बड़े कष्ट भी मिट जाते हैं। और राम का नाम तो दिव्य अमृत है, जिसे हमें हमेशा और रोज जपना चाहिए।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटी तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस पर बात होगी और साथ ही रमणीक व ऐतिहासिक स्थल भरमौर के बारे में जानकारी दी जाएगी और पर्यावरण में कंद पुष्प ट्यूलिप के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शुभ प्याग, जिसमें आप सुन सकते हैं हिमाचली गीत व लोकगीत। आठ पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का और 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम कानून की बात। प्रातः 9:00 आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि का। प्रातः 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत और 10:30 पर सुनिएगा हिमाचली गीत व लोकगीत। कुछ पंजाबी गीत व लोकगीत आपको सुनवाएंगे 11:05 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 11:30 पर और 12:00 समय होगा फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का। 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम घर परिवार और बातचीत का विषय रहेगा विश्व एड्स टीकाकरण दिवस और साथ ही दोपहर का आलस भगाएं और रहें चुस्त दुरुस्त, ये विषय रहेगा आज के घर परिवार कार्यक्रम का। और साथ ही मसालों से संबंधित जानकारी दी जाएगी, जिसमें काली मिर्च के गुणों के बारे में जानकारी साझा की जाएगी और साथ ही पहाड़ी नमक के गुणों की भी जानकारी साझा की जाएगी। दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भजन और 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा मंच।

0: और युवा मंच कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे नई उड़ान, जिसमें गायक और गीतकार अमन गढ़वालिया के साथ बातचीत की जाएगी। मौजा ग्राइदिया कार्यक्रम सुनिएगा 6:30 पर, जिसमें बातचीत का विषय रहेगा गर्मियों में ख्याल रखें पशुधन का। और साथ ही 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, और विषय रहेगा मधुमक्खी पालन रोजगार का उपयुक्त साधन। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। 8:30 पर देशगान सुनवाया जाएगा, और रात्रि 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही कलाकार, जिसमें संगीतकार अजय अतुल के संगीतबद्ध किए कुछ नगमे सुनवाए जाएंगे। और हिमाचली गीतों व लोकगीतों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:30 पर, और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। और आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9, दोपहर 1:00, शाम 5:00, शाम 7:00 और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार, और दोपहर 1:05 पर, शाम 5:05 पर, शाम 7:05 पर और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: श्रूयंताम प्रवाचक सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार, निवेश, प्रविधि, नवाचार, हरित परिवर्तनम, अंतरिक्ष रक्षा, अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन अभियानं, स्वच्छोर्जा, अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्री मोदी तत्रत्य प्रधानमंत्रिणा जोनास गहरस्टोरी इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथ ग्रहणम अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनंतपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्व युतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रंथि युतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटि मितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटि मितानां विकास कार्याणां शुभारंभमपि श्री शाहः विहितवान्। एतत् पूर्वं प्रथमे दिने श्री शाहः सूचना केन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्री शाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
3: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
1: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार। और सुप्रभात कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत। और श्रोताओं, नई नई सुबह, नया नया सवेरा, सूरज की किरणें, हवाओं का बसेरा और मुस्कुराता हुआ आप सभी का ये चेहरा। और हम यही कामना करेंगे कि मंगलमय और खूबसूरत रहे ये हसीन सवेरा। तो इन खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ आज के सुप्रभात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के कार्यक्रम में लाए हैं आपके लिए ढेरों जानकारियां और साथ में आपके मनोरंजन के लिए कुछ प्यारे से फिल्मी तराने। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज विशेष के साथ और प्रकाश डालते हैं उन घटनाओं पर जो कि इतिहास में आज ही के दिन यानी 18 मई के दिन घटी थी। वर्ष 1848 में जर्मनी ने पहली नेशनल असेंबली का उद्घाटन जो था वो आज ही के दिन हुआ था। और पहली भारतीय फिल्म श्री पुंडलिक वर्ष 1912 में आज ही के दिन रिलीज हुई थी। साथ ही वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण में अपने पहले भूमिगत परमाणु बम परीक्षण के साथ भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना था और इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा का नाम भी दिया गया था। वर्ष 1991 में ब्रिटेन की पहली एस्ट्रोनॉट हेलेन शर्मन ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। और वर्ष 1950 में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर करने के एक साल बाद इसी दिन विश्व भर के 12 देशों ने अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए एक स्थायी संगठन पर सहमति दी थी। और वर्ष 2006 में नेपाल नरेश को कर के दायरे में आज ही के दिन लाया गया था। और वर्ष 2008 में पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से भी सम्मानित किया था। और दोस्तों, हर वर्ष 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस भी मनाया जाता है। तो कार्यक्रम में और भी जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

क्षतः जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज ही के दिन जन्मी कुछ महान विभूतियों के बारे में। तो महान ब्रिटिश दार्शनिक, गणितज्ञ और नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रेंड रसेल का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1872 में हुआ था। और भारत के 12वें प्रधानमंत्री H.D. देवगौड़ा का जन्म भी आज ही के दिन यानी 18 मई 1933 को हुआ था। और आज ही के दिन यानी 18 मई के दिन कुछ महान विभूतियों ने इस नश्वर संसार को छोड़ा था। उनमें प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जय गुरुदेव का निधन वर्ष 2012 में आज ही के दिन हुआ था। और साथ ही भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी पंचानन माहेश्वरी का निधन भी वर्ष 1966 में आज ही के दिन हुआ। और हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रीमा लागू का निधन भी वर्ष 2017 में आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, फिल्म अभिनेत्री रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 में हुआ था और वो हिंदी और मराठी सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री थी। उन्हें बॉलीवुड की आदर्श माँ की भूमिकाओं के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है और 1990 और 2000 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने सलमान खान और संजय दत्त जैसे सितारों की माँ के रूप में जो है वो भूमिकाएं निभाई थी और जिससे उन्हें वो जो थे घर घर में प्रसिद्ध हो गई थी। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो फिल्में हम आपकी हैं, कौन, हम साथ साथ हैं, वास्तव इत्यादि हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोता, इस खूबसूरत से गीत के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विश्व एड्स टीकाकरण दिवस की। दोस्तों, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस भी कहा जाता है, ये दिन हर वर्ष आज यानी 18 मई को मनाया जाता है और ये दिन HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने और इसकी रोकथाम के लिए एक प्रभावी वैक्सीन यानी टीका विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए समर्पित है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एड्स के टीके के अनुसंधान के बारे में शिक्षित करना और उन स्वयंसेवकों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों को सम्मानित करना है जो सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने के लिए काम कर रहे हैं। इस दिन की शुरुआत 18 मई 1998 को की गई थी और दोस्तों, एड्स से बचाव का चूंकि अभी तक कोई आधिकारिक वैक्सीन जो है वो नहीं आई है, लेकिन इसके लिए बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है और जागरूकता और शिक्षा ही एड्स से बचाव है।

कार्यक्रम में आगे बात करते हैं विश्व संग्रहालय दिवस पर। दोस्तों, हमारे देश भारत और विश्व भर में अनगिनत म्यूजियम हैं और यहाँ पर विश्व भर की सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा जाता है और इसी श्रृंखला में बात करेंगे इंटरनेशनल म्यूजियम डे के बारे में, यानी विश्व संग्रहालय दिवस के बारे में, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। ये दिन हमारे इतिहास, प्राचीन समृद्ध परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोकर रखने वाले संग्रहालयों के महत्व को उजागर करने के लिए समर्पित है और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1977 में की गई थी और वर्ष 2026 का जो है इस दिवस का थीम है वो है एक विभाजित विश्व को एकजुट करने वाले संग्रहालय।

0: वर्ष 1977 में पहली बार आधिकारिक तौर पर इस दिवस को अपनाने का निर्णय लिया गया था और इसके बाद वर्ष 1983 में संयुक्त राष्ट्र ने भी संग्रहालयों की विशेषता और समाज में इनकी उपयोगिता को समझते हुए इसे मनाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। और दोस्तों, ये दिन लोगों को याद दिलाता है कि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने का भी माध्यम है। इसका मूल उद्देश्य आम जनता को अपने पूर्वजों की अनमोल यादें, मानव सभ्यता की यात्रा और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति जागरूक करना है। इस अवसर पर देश के प्रमुख स्मारकों, ऐतिहासिक संग्रहालयों में आम जनता के लिए प्रवेश भी निशुल्क रखा जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने इतिहास को करीब से देख सकें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: सुनो एक तराना, नया एक फसाना, के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

श्रोतो, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। और कार्यक्रम सुप्रभात में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रमणीक और ऐतिहासिक स्थल भरमौर के बारे में। जी दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत ही खूबसूरत रमणीक और धार्मिक स्थल हैं और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित भरमौर के बारे में, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। ये एक अत्यंत धार्मिक व रमणीक स्थल है जिसे शिव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये स्थान अपनी प्राचीन वास्तुकला, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। और इस स्थल के धार्मिक महत्व की बात की जाए तो भरमौर के केंद्र में स्थित

झील और कैलाश पर्वत की यात्रा का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। और दोस्तों मणिमहेश झील जो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 13,500 फुट है, ये एक पवित्र झील है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित है। और इसके साथ है छतराड़ी मंदिर, यहाँ स्थित शक्ति देवी का प्राचीन मंदिर है और अपनी उत्कृष्ट लकड़ी की नक्काशी के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। और साथ ही कुगती गाँव की अगर बात की जाए तो ये चंबा का आखिरी गाँव और ट्रैकर्स के लिए भी स्वर्ग माना जाता है। यहाँ पर कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी जाना जाता है। और दोस्तों भरमौर चंबा से 60 से 62 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है और इस स्थान पर जाने का सबसे अच्छा समय जो है वो गर्मियों में अप्रैल से जून और सर्दियों में अक्टूबर नवंबर का महीना जो है वो सबसे उत्तम है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए आप बस या टैक्सी सेवा जो है वो आसानी से आपको उपलब्ध हो सकती है, तो अगर समय मिले तो आप इस स्थान पर ज़रूर जाइएगा।

श्रोता, पर्यावरण में आज हम बात करेंगे कंद पुष्प ट्यूलिप के बारे में। जहाँ दोस्तों हमारा पर्यावरण खूबसूरत फल फूल और अनेक प्रकार की औषधीय पौधों से सुसज्जित है, और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कंद पुष्प ट्यूलिप के बारे में। जी दोस्तों, ट्यूलिप एक अत्यंत आकर्षक और लोकप्रिय फूल है, जिसे गुललाला के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से बसंत ऋतु में खिलता है और अपने जीवंत रंगों लाल, पीला, गुलाबी, सफ़ेद के लिए माना जाता है। ट्यूलिप का वैज्ञानिक नाम ट्यूलिपा है और ये एक कंदयुक्त बारहमासी पौधा है। ये प्यार और सुंदरता का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, ट्यूलिप के फूल न केवल सुंदर होते हैं बल्कि पारंपरिक रूप से इसके औषधीय उपयोग भी रहे हैं।

0: ट्यूलिप के अर्क का उपयोग जो है वो त्वचा की खुजली, चकत्ते और जलन को कम करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और पारंपरिक चिकित्सा में इसके फूलों का उपयोग जो है वो कीड़ों या मधुमक्खी के डंक के कारण होने वाले दर्द और सूजन को कम करने के लिए एक लेप के रूप में भी किया जाता है। और इसके अर्क का उपयोग त्वचा देखभाल के सौंदर्य के उत्पादों में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्यूलिप को ठंडी और नर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और इसके कंद को वर्षा के बाद और सर्दी से पहले लगाया जाता है। और भारत में कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन जो है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में भी ट्यूलिप गार्डन है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक जो वो हैं वो आते हैं और इसकी खूबसूरती का नज़ारा जो है वो लेते हैं। तो श्रोताओं, जानकारियों का सिलसिला यहीं पर थमता है, लेकिन चलते चलते एक प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के लिए।
1: जहां मौत जिंदगी पर हंसती है,

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शुभ प्रयाग।

0: इंस्पिरेशन
1: मई धमाका आ गया है, अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू, पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
2: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
3: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
4: Nexa.

अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार की आवाज़ में ये लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं जोगिंदर सिंह की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:55 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशगान।

0: आप सुन रहे थे देशगान। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक के लिए संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
4: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
8: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
9: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का यह बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नवभारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. India and Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. We have more details on this from our correspondent in Sweden covering the Prime Minister's visit.
11: Central to the visit was the adoption of a joint action plan, which aims to double bilateral economic exchange within 5 years. Under the theme India-Sweden Stronger Together toward 2047, both nations committed to holding a bilateral trade and investment summit in India in 2027. In the realms of technology and climate action, the visit secured significant agreements to co-create solutions 21st century. Both nations launched a joint innovation partnership 2.0 and agreed to establish a virtual India-Sweden Joint Sciences and Technology Center, focusing on AI, 6G, quantum computing and life sciences. Furthermore, Sweden-India Technology and AI Corridor will be strengthened to connect the two nations' startup ecosystem. On the climate front, the leaders announced the third phase of the leadership group for industrial transition, significantly expanding cooperation in green steel and low-carbon industrial transformation. Defense and security cooperation have transitioned from a traditional buyer-seller model to a long-term industrial partnership, with Swedish companies actively investing in India's defense production corridors. Prime Minister specifically thanked Sweden for its support following the Pahalgam terror attack, reaffirming a joint commitment to global stability. Finally, the visit celebrated a shared intellectual legacy and broader regional cooperation. To commemorate the centenary of Gurudev Rabindranath Tagore's historic visit to Sweden, both countries initiated the Tagore Sweden lecture series and exchanged unique gifts, including replicas of Tagore's handwritten epigrams found in Swedish archives. The presence of European Commission's President Ursula von der Leyen highlighted the visit's importance to the India-Euro partnership, with a renewed push for the India-Euro free trade agreement, described as the mother of all deals, to unlock new opportunities for innovators and investors alike.

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले किया जाएगा।

0: अलावा उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना। विशेषज्ञ हैं श्री आर मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला। इनसे भेंट कर रहे हैं जितेंद्र पाल सिंह।
1: नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी धर्मशाला के इस विशेष जानकारी पूर्ण कार्यक्रम कानून की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। कई बार जीवन में ऐसी प्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ जाती हैं जब व्यक्ति स्वयं को असहाय महसूस करता है, विशेषकर वे महिलाएं और नागरिक जो किसी अपराध का शिकार होते हैं। ऐसे समय में न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सहयोग भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। इसी उद्देश्य से आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नालसा कंपनसेशन स्कीम फॉर वुमेन विक्टिम्स सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकार यानी अपराध से पीड़ित व्यक्ति योजना 2019 के बारे में। ऐसी योजनाएं जो पीड़ितों को न्याय की राह पर संबल और सहायता प्रदान करती हैं। इन महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला के सचिव वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्री आर मेहुल शर्मा जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि कानून किस प्रकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ा है। शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हैं, तो हमारे श्रोताओं को पहले ये बताइए कि यह प्राधिकरण आम जनता के लिए किस तरह से कार्य करता है।
2: सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन मुख्यतः समाज के गरीब पिछड़े वर्गों व अपराध पीड़ितों के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के इन गरीब पिछड़े वर्गों व पीड़ितों को मुख्य धारा से जोड़ना है। हमारा प्रयास यही रहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो न्याय से वंचित रह जाए। इसके लिए हम गांव व दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करते हैं ताकि कानून की आधारभूत जानकारी सबको मिल सके व ये लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। विधिक सेवा प्राधिकरण मुफ्त कानूनी सहायता भी देता है। इसके लिए महिलाएं, बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वह व्यक्ति जिसकी सालाना आय 3 लाख से कम हो, ट्रांसजेंडर्स, एड्स पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग वह औद्योगिक कामगार पात्र हैं। एप्लीकेशन के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दस्तावेज की आवश्यकता होती है। मुफ्त कानूनी सहायता के लिए किसी भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय या विधिक सेवा प्रधि कमेटी में अप्लाई किया जा सकता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने अपराध पीड़ित व्यक्तियों के लिए मुआवजा देने की भी व्यवस्था की है, जो कि पीड़ित व्यक्ति को अपराध से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत मिलता है।
1: क्या आप ये बताना चाहेंगे कि इन दोनों स्कीम्स विक्टिम कंपनसेशन स्कीम और कंपनसेशन टू द वुमेन विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, इनमें अंतर क्या है?
2: पीड़ित महिला प्रतिकर स्कीम में सिर्फ महिलाओं को यौन अपराधों के कारण जो उन्हें शारीरिक व मानसिक हानि हुई है उसके लिए मुआवजा दिया जाता है। ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की एक स्कीम है। हमारी दूसरी प्रतिकर स्कीम जो कि हिमाचल प्रदेश अपराध के पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 है, उसमें महिला व पुरुष दोनों मुआवजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम है।
1: जी शर्मा जी, ये बताइए इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत किन व्यक्तियों को पीड़ित माना जाता है?
2: सबसे पहले तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इन स्कीमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति केवल अपराध पीड़ित होना चाहिए। मुआवजे के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं जिनमें प्राथमिक सूचना यानी FIR दर्ज हुई हो। विशेष परिस्थितियों में यदि FIR ना हुई हो तो कोर्ट में शिकायत दर्ज होनी चाहिए। इन स्कीमों में क्लॉज 2H के अंतर्गत वो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो पीड़ित कहलाता है, परंतु यदि पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसी परिस्थिति में उसके परिवारजन, वारिस या आश्रित पीड़ित माने जाएंगे और ये लोग मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, अब बात ये आती है कि अपराध होने के कितने समय के भीतर मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है?
2: इन स्कीमों में अपराध दर्ज होने के 12 महीने के अंदर मुआवजा के लिए आवेदन किया जा सकता है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में 12 महीने के भीतर आवेदन ना किया जा सका तो प्रार्थी को वो खास वजह बतानी होगी जिसके कारण वो 12 महीने के भीतर आवेदन ना कर पाया। यदि DLS से डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या SLS से स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ये वजह एक जायज वजह लगती है तो कमेटी प्रार्थी के एप्लीकेशन को स्वीकार कर सकती है, अन्यथा रद्द भी किया जा सकता है।
1: जी शर्मा जी, ये बताइए इन स्कीम्स के अंतर्गत पीड़ित मुआवजे के लिए आवेदन कैसे कर सकता है?
2: पीड़ित को मुआवजा देने के लिए ट्रायल कोर्ट में सेक्शन 396 सबसेक्शन 2 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जो पहले हमारी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था जो उसमें संशोधन करके और अब जो नया कानून हमारा प्रोसीजर के लिए आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसकी धारा 396 सब धारा 2 के अंतर्गत रिकमेंडेशन कर सकता है ट्रायल कोर्ट, या फिर पीड़ित व्यक्ति स्वयं ही जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मुआवजा लेने के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा, जब प्राथमिकी दर्ज होती है तो हर केस में जहां मुआवजा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है वहां पुलिस द्वारा मुआवजा प्राप्त करने में सहायता दी जा सकती है। और तीसरा तरीका यह है कि फैसले के समय यदि कोर्ट को लगे कि पीड़ित को मुआवजा जो दिया जा चुका है उसमें पुनर्वास के लिए काफी नहीं है, उसको रिहैबिलिटेशन के लिए अगर ट्रायल कोर्ट को जो समय कोर्ट उस केस को ट्राई कर रहा है अगर उनको यह लगता है कि जो अभी तक मुआवजा दिया गया है वो सफिशिएंट नहीं है तो कोर्ट DLSA से मुआवजा बढ़ाने की सिफारिश भी कर सकता है।
1: जी, मुआवजा आवेदन के कितने समय के भीतर मिल जाना चाहिए?
2: मुआवजा आवेदन के 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है।
1: और ये मुआवजा तय कौन करता है?
2: जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास कंपनसेशन यानी मुआवजा की कोई एप्लीकेशन आती है तो उसमें देखा जाता है कि क्या प्रार्थी इसका पात्र है। यदि व्यक्ति विक्टिम यानी पीड़ित है तो उसकी एप्लीकेशन को जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस कमेटी के सभी सदस्यों की सहमति से यह तय होता है कि पीड़ित को कितना मुआवजा मिलना चाहिए।
1: इन स्कीम्स में मुआवजे का भुगतान कौन करता है?
2: जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किए गए मुआवजे में फंड्स की डिमांड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की जाती है। राज्य सरकार इन स्कीमों के अंतर्गत प्रतिकर भुगतान के लिए फंड्स राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देती है। ये अकाउंट मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा ऑपरेट होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा डिमांड किया गया फंड लर्नेड मेंबर सेक्रेटरी सालसा द्वारा रिलीज किया जाता है।
1: मुआवजा तय करते समय किन किन मापदंडों का ध्यान रखा जाता है?
2: मुआवजा तय करते समय दोनों स्कीमों में दिए गए स्केड्यूल को ध्यान में रखा जाता है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के स्केड्यूल में सिर्फ मिनिमम अमाउंट दिया गया है, जैसे कि हत्या के लिए कम से कम 2 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित के लिए 3 लाख रुपए। इस शेड्यूल में ऊपरी सीमा नहीं दी गई है, जबकि कंपनसेशन टू वुमेन्स विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों दिए गए हैं, जैसे हत्या या मृत्यु में 5 लाख से 10 लाख रुपए और बलात्कार के केस में पीड़ित को 4 से 7 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। इसी तरह अन्य अपराधों के पीड़ितों को भी मुआवजा दिया जाता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी मुआवजा तय करते समय कुछ और मापदंडों को भी ध्यान में रखती है, जैसे अपराध की तीव्रता, मेडिकल एक्सपेंसेस, शिक्षा का नुकसान, क्या पीड़ित का रोजगार अपराध के कारण छूट गया है, क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हो गई है, क्या उसे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित अपराध के समय HIV पॉजिटिव तो नहीं हो गया, अपराध के कारण कोई शारीरिक अक्षमता तो नहीं हो गई, क्या पीड़ित को पुनर्वास की जरूरत है, क्या कोई अन्य कारण जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को ठीक लगे। इन सब बातों को मद्देनजर में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी कमेटी मुआवजा तय करती है और मिनिमम अमाउंट जो स्केड्यूल में दिया गया है उसमें कुछ और अमाउंट बढ़ाया जा सकता है।
1: क्या मुआवजा वापस भी लिया जा सकता है?
2: जी हाँ, मुआवजा वापस भी लिया जा सकता है यदि मुआवजा लेने के बाद पीड़ित या पीड़िता प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट ना करे, जानबूझकर झूठी इन्फॉर्मेशन देता या देती है या फिर झूठी गवाही देती है। इन परिस्थितियों में मुआवजा वापस लिया जाने का भी प्रावधान है।
1: यदि DLSA द्वारा कंपनसेशन देने से मना कर दिया जाता है तो क्या DLSA के फैसले के खिलाफ अपील भी की जा सकती है?
2: हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्कीम पीड़ितों को विक्टिम्स के रिहैबिलिटेशन के लिए बनाई गई है, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही इसका प्रावधान है। यदि पीड़ित को DLSA का फैसला मान्य नहीं है वह स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 90 दिन के अंतर अपील कर सकती है, कोई भी पीड़ित या पीड़िता।
1: जी, यदि किसी अन्य अथॉरिटी या किसी अन्य योजना के अंतर्गत पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है तो क्या फिर भी पीड़ित को इन स्कीम्स में मुआवजा मिल सकता है?
2: यदि पीड़ित व्यक्ति को किसी और विभाग द्वारा किसी अन्य स्कीम के तहत मुआवजा दिया गया है तो उसे इन स्कीमों के अंतर्गत मुआवजा नहीं मिलेगा, यदि मिला हुआ मुआवजा इन स्कीमों के अंतर्गत मिलने वाले मुआवजे से अधिक हो, परंतु यदि कम हो तो बकाया राशि मुआवजा के रूप में दी जा सकती है।
1: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: अंत में मैं श्रोताओं को यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने आसपास देखें, यदि आपको इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत कोई भी लाभार्थी मिलता है तो उसे हमारे धर्मशाला स्थित कार्यालय में फोन नंबर 01892222370 मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा 01892222370 फोन नंबर पर संपर्क करने की या फिर हमारे नालसा ऐप से ऑनलाइन अप्लाई करने की सलाह दे सकते हैं ताकि किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद हो सके।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम कानून की बात में हमने जाना कि किस प्रकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हिमाचल प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना अपराध से प्रभावित व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं को आर्थिक सहायता और न्याय पाने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध सहायता से वंचित रह जाते हैं। हमारा प्रयास यही है कि कानून की ये बातें आप तक सरल भाषा में पहुंचें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप स्वयं और दूसरों की मदद कर सकें। हम श्री आर मिहुल शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतनी सहजता से इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। धन्यवाद।
0: कानून की बात कार्यक्रम में आज आपने श्री मेहुल शर्मा, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा स्थित धर्मशाला से यौन उत्पीड़न की पीड़ित महिला व उत्तरजीवियों के लिए मुआवजा योजना तथा हिमाचल प्रदेश प्रतिकर यानी अपराध से पीड़ित व्यक्तियों के लिए योजना विषय पर भेंट वार्ता सुनी। इनसे भेंट कर रहे थे जितेंद्र पाल सिंह। यह कार्यक्रम धर्मशाला के सौजन्य से था। हमारा यह प्रसारण आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी रिले किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।

हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा मंच, और आज के इस कार्यक्रम में हम नई उड़ान के तहत बात करेंगे अमन गढ़वालिया से, जो कि गायक और गीतकार हैं। तो कार्यक्रम सुनना ना भूलिएगा।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि। सभी श्रोताओं को पूनम का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीतांजलि में। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, चलते जाना है, हर मुश्किल में खुद को संभालना है, कभी खुशी तो कभी गम मिलते हैं, हर हाल में हमें मुस्कुराना है। तो दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ आज का गीतांजलि कार्यक्रम जो है वो शुरू करते हैं और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तड़ी पार से, जिसे गाया है SP बालासुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

तो उस ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी लाती हैं, और खुश रहने के लिए हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, अपनों का ख्याल रखना चाहिए और अपनों के साथ रहना चाहिए, तभी ज़िंदगी का मज़ा है और इसमें में ही सबसे बड़ी खुशी है। तो सुनते हैं खुश रहने पर ये प्यारा सा गीत। किंग अंकल फिल्म से ये गीत हमने लिया है, जिसे गाया है नितिन मुकेश, विनोद राठौर और साधना सरगम ने।

दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब इस सफ़र में कोई सच्चा हमसफ़र मिल जाता है तो ये और भी हसीन हो जाता है। और एक अच्छा साथी हमारे सुख और दुख को साझा करता है, जिससे खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं और मुश्किलें कम हो जाती हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और ये कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा 9:30 पर। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 21 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी दर्ज। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजिन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित। और धर्मशाला में हुए IPL मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम तक नतीजे घोषित कर दिए गए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान नगर निगम धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए थे। देर शाम तक आए नतीजों के अनुसार भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने अधिकतर जगहों पर बाजी मारी। कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की, जबकि कुल्लू नगर परिषद की 11 सीटों में 3-3 पर भाजपा व कांग्रेस, जबकि 5 वार्डो में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। भुंतर नगर परिषद के 7 वार्डो में 3 पर भाजपा समर्थित, जबकि 4 सीटों पर कांग्रेस और बंजार में 5 पर कांग्रेस समर्थित, जबकि 2 वार्डो में भाजपा समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में 2 नगर निगम धर्मशाला व पालमपुर के अलावा 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत के लिए वोट डाले गए। हमारे संवाददाता के अनुसार अधिकतर जगहों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। इस बीच जिला कांगड़ा में नगर परिषद व नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बधाई दी है। उन्होंने इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है। इधर दूसरी ओर ऊना जिले के नगर निकाय चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं चंबा नगर परिषद में आए परिणामों के अनुसार कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि यहां पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 सीटों पर सफलता हासिल कर सके। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद ने एक बार फिर भाजपा ने कब्जा जमा लिया है। नगर परिषद के 13 वार्डो में से 7 वार्डो में भाजपा समर्थित उम्मीदवार ने विजय हासिल की। जीत के बाद भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में विजय जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
3: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
2: शिमला जिला के रामपुर में 9 वार्डों वाली नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर पहली बार जीत दर्ज कर परिषद में अपना परचम लहराया है। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय

0: प्रत्याशी विजयी रहा। बिलासपुर नगर परिषद के 11 वार्डों में भाजपा ने 9 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। घुमारवी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने ही सेंध मारी। यहां पर कुल 9 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 जबकि 7 जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने विजय हासिल की। इसी तरह शाहतलाई में भाजपा समर्थित उम्मीदवार 5 जबकि 2 वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहे। श्री नैना देवी जी नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद के 3-3 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस जबकि एक अन्य वार्ड पर आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सुंदरनगर नगर परिषद के 13 वार्डों में से 9 पर भाजपा समर्थित उम्मीदवार जबकि 2 पर कांग्रेस समर्थित और 2 पर आजाद उम्मीदवार विजेता रहे। नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस ने 8 वार्डों पर जीत हासिल की है जबकि यहां पर भाजपा समर्थित एक उम्मीदवार विजयी रहा। इसी तरह जोगिंदरनगर परिषद में 3 वार्डों में भाजपा समर्थित जबकि 2 पर आजाद उम्मीदवार जबकि 1 सीट पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी रहा। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराए। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर परिषद में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजीन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजीन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत नाहन विधानसभा क्षेत्र का कोलर गांव आदर्श और सौर गांव के लिए चयनित किया गया है। योजना के तहत सिरमौर जिला के 27 गांव का चयन किया गया था जिसमें सोलर पैनल लगाने की विभाग की योजना थी। एक रिपोर्ट।
1: सिरमौर जिला में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनुदान पर लोगों को सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत कोलर के गांव कोलर को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर गांव चयनित किया गया है। योजना के मुताबिक 5000 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव को सोलर प्लांट लगाने की सूची में शामिल किया जाना था मगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सिरमौर में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 27 गाँव चयनित किए गए थे जिसमें कोलर गांव ने सबसे अधिक पैनल लगाकर पहला स्थान हासिल। योजना के तहत अब सोलर पावर प्लांट संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि कोलर गांव को मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने शहरी निकायों के चुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, हिमाचल के 47 शहरी निकायों में से 21 पर भाजपा, 19 पर कांग्रेस समर्थित काबिज, 7 में अन्य के हाथ चाबी। पंजाब केसरी ने लिखा है, हिमाचल में 51 शहरी निकाय चुनाव में 69.16% रहा मतदान। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, कल से 23 तक अंधड़, वर्षा और बिजली गिरने की चेतावनी। सीबीएसई में अब पुनर्मूल्यांकन सस्ता, शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है, बोर्ड ने 12वीं की आंसर शीट देखने की फीस में भी की कटौती। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 47 शहरी निकायों के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी। 4 नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को होंगे घोषित। शहरी निकायों में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कार्यकर्ताओं की मेहनत व मुख्यमंत्री की जनहितैषी नीतियों की जीत। प्रदेश में आए शहरी निकायों के नतीजों के बाद भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत करेगी।

0: की दर, लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर व पारंपरिक कला को सहेजने के लिए केलंग निवासी तंजिन बौद्ध अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित, और धर्मशाला में हुए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं, लीजिए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम के बाकी के गीत।

0: मुझसे दोस्ती करोगे। लीजिए इस फिल्म में सुनते हैं उदित नारायण को।
1: सावन से एक लड़की।
0: बोल है आनंद बख्शी की और धुन बनाई है राहुल शर्मा ने।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में खूबसूरत हम सफ़र के साथ जन्मों का साथ निभाना भी एक ज़िंदगी का खूबसूरत पहलू है। तो लीजिए सुनते हैं प्रेम फिल्म से ये गीत, और जिसे गाया है अलका याग्निक और नलिन दवे ने, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। TNC अप्लाई।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी प्यार का गीत है तो इसे हर दिल को गाना ही पड़ेगा, मुस्कुराना भी पड़ेगा। और ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी लेकिन हौसलों के साथ इसे आगे भी बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कसूर से, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

आप सुन रही थी कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं। दीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

जी बिल्कुल, हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त ज्योति लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी श्रोताओं को हमारा स्नेह अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कोई मिल गया फिल्म के इस गीत के साथ। उदित नारायण और चित्रा की आवाजें हैं, इब्राहिम अश्क के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत निर्देशन।

आकाशवाणी धर्मशाला के साथ हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आपके रेडियो सेट्स पर पहुंचा रहे हैं संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में। आशिक फिल्म से ये गीत हमने लिया है। अलका याग्निक उदित नारायण की आवाजें हैं, शब्द रचना समीर की।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

आकाशवाणी धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। जोश फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत अब शामिल कर रहे हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ है, शब्द रचना समीर की, धुन बनाई है अन्नू मलिक ने।

0: धमाका आ गया है। अब घर लाए बोल्ड और स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा। इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 7.66 लाख से शुरू। पावरफुल परफॉर्मेंस, प्रीमियम फीचर्स और ट्रस्टेड सेफ्टी, सब कुछ स्टाइलिश मारुति सुजुकी ब्रेजा में। साथ ही पाइए टोटल बेनिफिट्स अप टू 60,000।
1: तो इंतजार कैसा, दिस में ड्राइव होम हैप्पीनेस। आज ही विजिट करें अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी एरीना शोरूम। TNC अप्लाई।
2: ये आवाज है अभिजीत की। इस गीत में अभिजीत का साथ दिया है अलका याग्निक ने। टक्कर फिल्म से ये गीत हमने लिया है। संगीत दिया है अनु मलिक ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये खूबसूरत गीत। ये संगीत है नदीम श्रवण का। समीर ने इस गीत को लिखा है और आवाज का जादू बिखेरा है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

कार्यक्रम के इसी आखिरी गीत के साथ फिल्म संगीत के आज के इस सुहाने सफर में बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं करनैल राणा की आवाज में गाए इस लोक गीत के साथ।

0: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही। इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज, मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा। और अब विक्टोरियस खरीदने पर बाइक एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000, तो देर किस बात की। आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए। मारुति सुजुकी SCNG, स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू। टीएनसी अप्लाई।
1: अब सुनिए संदेश कुमार की आवाज में ये अगला लोकगीत।

0: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
1: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
2: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TMC अप्लाई।

इसी के साथ हिमाचली गीतों और लोक गीतों के आज के इस सफर में बस इतना ही। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश के शहरी निकायों में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद देर शाम

0: तक आए नतीजों में अधिकतर जगहों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कल चार नगर निगमों धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी सहित 25 नगर परिषदों व 22 नगर पंचायतों में वोट डाले गए। चुनाव नतीजों में कुल्लू जिला के मनाली नगर परिषद में सभी 7 सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। कुल्लू नगर परिषद में भाजपा और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार बराबरी पर रहे, जबकि 5 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी। भुंतर, बंजार और निरमंड के अधिकतर वार्डों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। कांगड़ा जिले की 5 नगर परिषद व 1 नगर पंचायत में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जिले में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए इस जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की जनहितैषी नीतियों की जीत बताया है।
1: जिला कांगड़ा में 6 के 6 स्थानों में चुनाव हुए थे, वहां पे कांग्रेस ने जो है भारी बहुमत से जीती है। और ये कांग्रेस सरकार की नीतियां और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो काम जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और जिला कांगड़ा के लिए विशेष कर किए थे, ये उसका नतीजा है कि यहाँ पे जो है कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है।
0: दूसरी ओर ऊना जिले में नगर निकाय के चुनाव नतीजों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 6 में से 4 निकायों पर अपना कब्जा जमाया है। चंबा नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 6 जबकि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 5 वार्डों में जीत दर्ज की। सिरमौर जिले के नाहन नगर परिषद में एक बार फिर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा किया है। यहां 13 वार्डों में से 7 पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। जीत की बधाई देते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सीधे तौर पर दर्शाती है कि प्रदेश में चल रही कांग्रेस समर्थित सरकार से लोग तंग आ चुके हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की विजय ने एक बार फिर इस बात को साबित कर दिया है कि वर्तमान कांग्रेस की सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है, जिसने 3.5 साल में हिमाचल के जनमानस का जीना दूभर कर दिया है। और हम एक बार फिर इस बात को वायदे से कहते हैं, आने वाले साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनेगी। नाहन, सिरमौर और हिमाचल में विकास का एक नया दौर शुरू होगा।
0: शिमला जिला के रामपुर में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने 9 में से 5 सीटों पर जीत दर्ज कर नगर परिषद में पहली बार अपना परचम लहराया है। बिलासपुर नगर परिषद के अलावा घुमारवी, शाहतलाई व नैना देवी के अधिकतर वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मंडी जिले के सरकाघाट नगर परिषद में भाजपा व कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 3-3 वार्डों में जीत दर्ज की है। वहीं सुंदरनगर के 13 वार्डों में भाजपा समर्थित 9 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। जिले के नेरचौक नगर परिषद में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 8 वार्डों में जीत का परचम लहराया है, जबकि जोगिंद्रनगर नगर परिषद में भाजपा अव्वल रही है। सोलन जिला के परवाणु नालागढ़ नगर परिषद में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने परचम लहराया है। जिले की अर्की व कंडाघाट नगर पंचायत में भी भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सेंध मारी है। इस बीच नगर निगम चुनाव के नतीजे 31 मई को घोषित किए जाएंगे। प्रदेश की पंचायतों में 26, 28 व 30 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार अभियान ने तेजी पकड़ ली है। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी प्राथमिकताएं उनके सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार की इसी कड़ी में जिला परिषद से लेकर वार्ड सदस्य तक उम्मीदवार लोगों के साथ बैठकें कर अपनी जीत सुनिश्चित करने में जुटे हुए हैं। लाहौल स्पीति की सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक कला को सहेजने के लिए निरंतर कार्य कर रहे केलंग निवासी युवा सामाजिक उद्यमी तंजीन बौद्ध को आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा अनसंग हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तंजीन बौद्ध और उनकी टीम लंबे समय से लाहौल की विलुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को बचाने के प्रयासों में जुटी हुई है। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से एक 80 साल पुराने पारंपरिक घर को संरक्षित कर धरोहर केंद्र के रूप में विकसित किया है। इसके अलावा वे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। धर्मशाला में कल खेले गए आईपीएल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 222 रन बनाए, जवाब में पंजाब किंग्स की टीम 8 विकेट पर 198 रन ही बना सकी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं पंजाबी गीत। सबसे पहले कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं हंस राज हंस की आवाज में गाया हुआ ये पंजाबी गीत।

पंजाबी गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के संग कार्यक्रम का अगला पंजाबी गीत सरबजीत चीमा की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं।

सरबजीत चीमा की आवाज में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी पंजाबी गीत। इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को इजाजत।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे पंजाबी गीत। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
3: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
3: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
3: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
3: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
3: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
3: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
3: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
3: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
3: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
3: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
3: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
3: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी
3: जी। विमलेश जी, ये सचमुच एक बढ़िया

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes, and one thing more. Notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir.
3: I have seen rainbow.
4: It has 7 colors.
0: So, children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
5: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Lang Lingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
6: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
7: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
8: तुलसी गौड़ा, a 72-year-old tribal woman from Karnataka.
9: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
10: Encyclopedia of the forest she is called in Karnataka, तुलसी गौड़ा.
7: जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
11: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
12: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
13: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
12: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
14: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
2: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
3: बिल्कुल होता है।
2: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
3: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
2: है ना
3: जी।
2: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
2: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
1: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
2: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
2: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
2: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
2: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
2: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
2: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं, समझे?
4: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
4: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
1: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रही हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, और फिल्म है हम आपके हैं कौन। गीतकार हैं देव कोहली और संगीतकार हैं राम लक्ष्मण।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म साहिबा से, जिसे गाया है हरिहरन ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिवहरी ने।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर परिवार।

नमस्कार, प्रणाम और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप सभी सहेलियों का स्वागत करते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी ज्योति और आप सुन रहे हैं अपना कार्यक्रम घर परिवार। सखियों, हम महिलाओं की दिनचर्या भी कमाल की होती है। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक हम सब का दिन कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। घर के कामकाज, बच्चों की पढ़ाई, बड़ों की देखभाल, नौकरी पेशा है तो वहाँ की भी जिम्मेदारी, इन सब में हम इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि कभी कभी खुद से बात करने का भी वक्त ही नहीं मिलता। ऐसा लगता है मानो हम घड़ी की सुई की तरह पूरे घर में घूम रही हूँ। पर आज सखियों, इस दोपहर मैं चाहती हूँ कि हमारी जो सखियाँ हैं वह अपनी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए विश्राम दें। अपनी रसोई का काम कर रही हैं या जो भी कार्य आप इस समय कर रही हैं उसे सहजता से करते हुए हमारी बातों को भी सुने। सखियों, जिंदगी कोई कठिन परीक्षा नहीं है जहां हमें रोज खुद को साबित करना है। भाई, इसको तो जीना है। हम महिलाएं पूरे घर का ख्याल रखने के इस फेर में अपनी खुशी का डिब्बा सबसे नीचे दबा देती हैं। ये जीवन है सखियों, कोई परीक्षा नहीं जिसे हमेशा सॉल्व ही करना है, हल ही करना है, जिसमें हमें हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही बनना है। सर्वश्रेष्ठ बहू, परफेक्ट माँ, है ना सखियो, बेस्ट वर्किंग वुमेन का मेडल ही जीतना है। भाई, जिंदगी तो एक आइसक्रीम की तरह है, इसका स्वाद लीजिए वरना पिघल तो ये वैसे भी रही है। कभी कभी सखियो, खुद के लिए वक्त निकालना भी जरूरी है जिसमें आप अपनी पसंद का कोई भी कार्य कर सकती हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको सुकून मिले, अपने मनपसंद कोई पोशाक ही पहन लें, या उन पौधों को देखिए जिन्हें आपने कितने प्यार से सींचा है, या फिर अपनी पुरानी दिनों की कुछ यादों को ही सहेजिए, उन्हें याद कीजिए और फिर मुस्कुरा दीजिए। जब तक सखियों आपका मन खुश नहीं होगा, आप पूरे घर को कैसे खुश रख पाएंगी। इसलिए एक वादा खुद से ज़रूर करना है कि हर दिन का कुछ हिस्सा आप सिर्फ अपने लिए रखेंगी, अपने लिए चुराएंगी। जी हाँ, चुराना ही पड़ेगा सखियों, क्योंकि आप खास हैं, अपने घर की धड़कन है। और मौसम सखियों गर्मियों का है, खास ध्यान आपको इसमें अपना रखना है, अपनों का भी रखना है। तपिश और चिलचिलाती इस धूप से बचने के लिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। एक बोतल पानी भरकर अपने पास रखें और इससे घूंट घूंट पानी आप पीते रहें। सखियों, ये बहुत अच्छा है, आप करके देखिए। कोशिश करिए कि दिन में दो बार उस बोतल का पूरा पानी पीकर उसे दोबारा भरना है। इसे एक आप टास्क बना लीजिए और ये एक बहुत ही अच्छी आदत फिर आपकी बन जाएगी। और सबसे ज़रूरी है कि जब भी काम से थोड़ा आप फ्री हों तो आपने आराम ज़रूर करना है। हर वक्त भाग दौड़ करने से थकान जल्दी हो जाती है, तो ज़रूर सखियों आपने आराम करना है जब भी आपको खाली समय मिले, और उसके बाद कोई भी ऐसा कार्य करें जिससे आपको खुशी मिले। हम तो आपसे कहते ही हैं सखियों कि खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि आप खास हैं। चलिए अब कार्यक्रम का मिजाज बदलकर और खुशनुमा बनाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय

0: बर्ताव करें आपका बचाव।
1: आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। सखियों, हम महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक पूरी ताकत अपने परिवार को सुरक्षित रखने में लगा देती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके नाम से ही समाज में एक अजीब सा डर और हिचक पैदा हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एड्स की। आज सखियो 18 मई है, यानी विश्व एड्स टीकाकरण दिवस। आज का दिन बहुत खास है और इस मंच से इस विषय पर बात करना हम सखियों के लिए बेहद ज़रूरी भी है। सखियो, अक्सर जब हम एड्स का नाम सुनते हैं तो मन में पहला विचार 1 दिसंबर का आता है, जब हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। लेकिन आज यानी 18 मई का दिन थोड़ा अलग है। आज का दिन उन हज़ारों वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वेच्छाकर्मियों को सलाम करने का दिन है जो दिन रात एक ऐसी वैक्सीन, जी हाँ, एक ऐसे टीके की खोज में जुटे हैं जो इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। अब प्रश्न उठता है कि क्या एड्स का टीका आ गया है? तो सखियों, अभी तक एड्स का पूरी तरह प्रमाणित टीका बाज़ार में नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिक बहुत करीब पहुंच चुके हैं और आज का दिन इसी उम्मीद को जगाए रखने और इस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। सखियों, एक नारी होने के नाते समाज को जागरूक करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। एड्स सिर्फ बीमारी नहीं है, इसके साथ एक सामाजिक अभिशाप भी जुड़ जाता है जिससे पीड़ित व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। हमें इस सोच को बदलना होगा। एड्स छूने से, साथ खाने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। ये जागरूकता हमें अपने घर और आस पड़ोस में फैलानी होगी। जब तक सखियों टीका नहीं आता है, तब तक बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। किसी भी सरकारी अस्पताल में इसकी जांच मुफ्त और पूरी तरह गुप्त रखी जाती है। अगर मन में कोई भी शंका हो तो सरकार की मुफ्त हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करके सही जानकारी ली जा सकती है। ये नंबर है 1097। तो आइए सखियों, आज के दिन 18 मई के दिन हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम समाज से एड्स के प्रति भेदभाव को मिटाएंगे, सही जानकारी फैलाएंगे और वैज्ञानिकों की इस मुहिम को अपना पूरा समर्थन देंगे। और अब सखियों, बात करते हैं कार्यक्रम में अगले विषय की। सखियों, मई का ये महीना है और सूरज की तपिश और तेज़ धूप से हम सब बेहाल हैं और ऊपर से ये दोपहर का समय, घर के सारे काम निपटाकर जब हम बैठती हैं तो शरीर ऐसा भारी होने लगता है कि बस लगता है कहीं एक झपकी मिल जाए। ऐसा होता है सखियों, है ना? और इस चुभती गर्मी में आलस्य और सुस्ती हम पर हावी हो जाती है। अक्सर इस सुस्ती को हटाने के लिए हम बार बार चाय या फिर कॉफ़ी का सहारा भी लेती हैं, जो ऐसी गर्मी में हमारे पेट और सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम इस सुस्ती को भगाने के लिए सखियों ऐसे जादुई और झटपट उपाय लाए हैं जिससे आप तंदुरुस्त रहेंगी। तो सबसे पहला जो नुस्खा है वह ये है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। शरीर में पानी की कमी होते ही सुस्ती सबसे पहले हावी होती है, इसलिए दोपहर के भोजन के बाद 1-2 गिलास ठंडा पानी ज़रूर आपने पीना है। पानी पीने के अलावा एक और आसान तरीका है कि चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना। इससे हमारा नर्वस सिस्टम, जी हाँ, स्नायु तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता है। गर्मियों में सखियों दोपहर के वक्त भारी खाने से भी बचाव करना चाहिए। खाने में दाल, हरी सब्जियां, दही और छाछ में थोड़ा भुना जीरा डालकर पिएंगी तो पेट भी ठंडा रहेगा और ऊर्जा भी इससे बनी रहेगी। और हाँ सखियों, लंच के तुरंत बाद लेटने से भी बचें। अपने ही कमरे में या बरामदे में सिर्फ 5 मिनट टहलना शुरू कर दें और अगर मुमकिन हो तो खिड़की के पास जाकर 2 मिनट के लिए गहरी सांसें लें, प्राणायाम करें। दिमाग को जैसे ही भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी, आप खुद को एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगी। और अगर बहुत ज़्यादा सखियो थकान हो तो 20-30 मिनट की एक छोटी सी झपकी लें, उससे ज़्यादा नहीं, ये भी आपको बहुत राहत दिलाएगी। तो गर्मियों में सखियो दोपहर के समय भी सक्रिय रहने का लगभग पूरा मंत्र तो आपको हमने दे दिया है, ताकि हमारी जो सखियाँ हैं वह सुस्त ना रहें और चुस्त दुरुस्त रहकर अपने दिन को इंजॉय करें। और काम करते समय रेडियो पर हमारा ये कार्यक्रम सुनना भी तो सखियो एक बेहतरीन शक्ति वर्धक है। तो चलिए सुरीला सा एक और गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आपको सुनवा देते हैं।

इस प्यारे से गीत को सुनते सुनाते लौट आए हैं कार्यक्रम घर परिवार में। और सखियों, आज सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आपसे बात होती है मसालों के बारे में, और आज जानकारी देंगे काली मिर्च के बारे में। सखियों, क्या आप जानती हैं कि प्राचीन और मध्यकाल में काली मिर्च केवल भारत के केरल मालाबार तट जैसे चुनिंदा हिस्सों में ही उगती थी। यूरोप और अन्य देशों में इसकी भारी मांग थी, लेकिन वहां तक पहुंचने में लंबा समय और जोखिम था, जिससे इसका दाम सोने के बराबर था। व्यापारियों द्वारा इसका उपयोग मुद्रा की तरह व्यापार में भी किया जाता रहा है। उस समय सखियों रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे, ऐसे में मांस को संरक्षित रखने के लिए काली मिर्च का व्यापक रूप से उपयोग होता था। आज तो सखी बहुत से देशों में इसे उगाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी किस्म आज भी भारत में ही मिलती है। आपकी रसोई में रखा छोटा सा काला दाना, जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, असल में गुणों का खजाना है। जी हाँ, इसे मसालों का राजा भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय मसालों में से एक है। आइए जानते हैं सखियों इसके गुणों के बारे में। काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन नामक तत्व पाचन शक्ति को बढ़ाता है और गैस अपच की समस्या इससे दूर होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण ये खांसी, कफ और गले के संक्रमण में बहुत फायदेमंद है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। इसका तीखा और चटपटा स्वाद लगभग सभी प्रकार के नमकीन व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है। सूप, करी, सॉस, सलाद में ये विशेष रूप से प्रयोग होती है। गर्म मसाला बनाने में भी सखियों साबुत काली मिर्च का उपयोग होता है, और रात को सोते समय गुनगुने दूध या शहद के साथ चुटकी भर पिसी हुई काली मिर्च का सेवन करने से सर्दी, जुकाम और नींद ना आने की समस्या में भी राहत मिलती है। तो काली मिर्च सखियों बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इसका सेवन करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं सेहत और स्वाद के इस क्रम की, जिसमें आज आपको जानकारी दे रहे हैं पहाड़ी नमक की। सखियों, नमक हमारे खाने का अहम हिस्सा है, जिसके बिना खाने का स्वाद अधूरा होता है। नमक ना हो तो खाना स्वादिष्ट ही नहीं लगता। आजकल हमारी रसोई में कई तरह के नमक मौजूद हैं, जिनके अपने फायदे भी हैं। सफ़ेद नमक, काला नमक, सेंधा नमक या सी सॉल्ट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इन्हीं में से एक नाम है पहाड़ी नमक, जो अपने स्वाद के साथ साथ बेहतरीन खुशबू के लिए भी जाना जाता है। पहाड़ी नमक, जिसे पिसा हुआ नमक भी कहा जाता है, और स्थानीय बोली में पिसिया लून भी इसे बोलते हैं, ये कोई साधारण नमक नहीं, बल्कि मसालों और जड़ी बूटियों का खास मेल है। पहाड़ी इलाकों में इसे पुराने समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें लहसुन, जीरा, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना और हिमालयी गुलाबी नमक शामिल है। सबसे खास बात यह है सखियों कि इसे मिक्सी में नहीं, बल्कि हाथों से सिलबट्टे पर पीसा जाता है, और स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी ये खूब भाता है। पहले सखियों, जब घर में यदि साग सब्जी ना बनी हो, तो अब लोग जो है वो पिसे हुए नमक से ही रोटी खा लिया करते थे, और सलाद में भी इसका उपयोग होता था। और जहाँ एक तरफ पहाड़ी नमक पहाड़ी संस्कृति को झलकाता है, तो वहीं आज यह महिलाओं के रोजगार का जरिया भी बना हुआ है। ग्रामीण महिलाएं इस पहाड़ी नमक को बाजारों में बेचती हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर भी इसकी बिक्री कर रही हैं। और पहाड़ी नमक पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खनिजों से भरपूर है, वजन नियंत्रित करता है, तो ज़रूर सखियो इस नमक का उपयोग आप करें और खुद को तंदुरुस्त रखें। और चलिए कार्यक्रम में अब चलते चलते आपको सुनवा रहे हैं एक और प्यारा सा गीत।

इसी के साथ दीजिए कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी ज्योति को अनुमति। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जतिंद्र सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolising the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defence of Vietnam, General Phan Van Giang. Mr. Singh's visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheesan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
2: Yana Vadacheri Damodara Menon Satheesan enna njan niyamam vali sthapithamaya Bharatathinte bharanaghadanayodu nirvyajamaya vishwasthathayum.
0: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P.K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Prime Minister Narendra Modi has congratulated V.D. Satheesan on taking oath as the Chief Minister of Kerala. In a social media post, Mr. Modi said the central government will assure all possible support for the newly formed Keralam government in fulfilling the aspirations of the people. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, has arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Simi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In a landmark decision, the Shubh Hindu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
4: हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज़्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनी गंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नज़र आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग

मिलते और बिछड़ते हैं, हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है, किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं, ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफ़र में कुछ गाने, गुजरा हुआ ज़माना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफ़र विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने, आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरी फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज़ हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज़्यादा पुराने गाने ज़्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही हैं कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारतें करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ ज़माना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। वाकई एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफ़र में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उससे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। और उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है, तो बताइए कि संग्रहालय में ज़्यादातर गुजरे ज़माने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत ख़ास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूँ भी देखा है, गुजरा हुआ ज़माना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ ज़माना वापस तो नहीं आ सकता, ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभ्यारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में लिए गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीज़ें, धरोहर, विरासत, ये म्यूज़ियम उन्होंने दो बार देखा है। म्यूज़ियम में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज़ को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीज़ें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफ़ी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो ज़रूर बताएं। और हाँ, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफ़र की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डोलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी ज़िंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफ़र में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफ़र सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी ज़रूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोहनीश जी का नाम भी, यानी मोहनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा ज़िला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूँ, अपने भाई बहनों के साथ वाले फ़ोटो और अपने बच्चों का बचपन का फ़ोटो, परिवार का फ़ोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूँ ज़रूर पलट कर देखती हूँ और कुछ उसमें से फ़ोटो

खत्तर में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड वाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम करा कर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहाँ क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत। याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने, छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नज़दीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहाँ गया था, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने से पहले फिल्म यूनिट वहाँ से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है, और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफ़र में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज़ देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूँ। बड़ा ही सुंदर शब्द हैं। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाज़ा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब ना कोई गिला है, ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं, याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना, संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहाँ गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाह कर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो, ठीक है, चलिए, आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफ़र इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज़ हवाएं, कौन वक्त की धूप हो या तेज़ हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहाँ, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज़्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता ज़रूर है, लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब ज़रा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है, और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया, जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताज़ा की है, प्रेम की। 8वीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती हैं तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती हैं। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें ये संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना ज़रूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा, और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाज़ें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

और हम पुकार ही रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाज़ें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है ख़त्म। तो सुरीला सफ़र के इस सफ़र में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी परिवार पर। परिवार मानव जीवन की पहली पाठशाला होती है। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं बल्कि प्रेम, संस्कार, सुरक्षा और अपनापन का सुंदर संगम होता है। हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। माता पिता से हमें अनुशासन, त्याग और मेहनत का पाठ मिलता है, तो वहीं दादा दादी, नाना नानी हमें अपने अनुभवों से सही मार्ग दिखाते हैं। परिवार के बीच रहकर व्यक्ति सहयोग, सहनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण सीखते हैं। हर परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो माला के धागे की तरह पूरे परिवार को जोड़कर रखता है। फिर वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन, दादा दादी या माता पिता होते हैं। उस धागे की मजबूती पर पूरे परिवार की एकता टिकी होती है, जिनके बदौलत पूरा परिवार एकजुट, एक साथ होता है।
1: फूलों में खुशबू है, इस दिल में।

आज के आधुनिक युग में भले ही लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ रहे हों, लेकिन मानसिक शांति और सच्चा सुख केवल परिवार से ही मिलता है। जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, उस वक्त हमारा परिवार एकजुट होकर हमारा सहारा बन जाता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें परिवार का साथ मिलता है। एक अच्छा परिवार समाज की नींव होता है। यदि परिवार में एकता होगी तो ये परिवार समाज में अच्छा उदाहरण बन जाता है। परिवार की वजह से बच्चों को नैतिक शिक्षा मिलती है, जो उन्हें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। कुछ खास अवसर पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है, गीत संगीत की महफिल जमती है, तब वहाँ का माहौल इतना खूबसूरत हो जाता है जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते।

ए संजू, ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

परिवार जीवन का वो अनमोल खजाना है जिसकी कीमत धन दौलत से नहीं आंकी जा सकती। ये वो छाया है जहां मनुष्य हर पीड़ा को भूल जाता है। ये वो आश्रय है जहां आंसू भी मुस्कान बन जाते हैं। पर आजकल तकनीक ने लोगों को पास लाकर भी मन से दूर कर दिया है। मोबाइल फ़ोन की चमक से रिश्तों की मिठास कहीं कम होती नज़र आ रही है। इसलिए आवश्यक है कि कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, अपने परिवार के साथ हमें वक्त ज़रूर बिताना चाहिए। और उस वक्त जब हमारे अपने हो तो मोबाइल फ़ोन को थोड़े समय के लिए दूर रख देना चाहिए। मुश्किल होती है ना, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि परिवार ही जीवन का आधार है, समाज की आत्मा है। आपके परिवार में हमेशा प्रेम और रिश्तों की मिठास बनी रहे और घर स्नेह की रोशनी से हमेशा जगमगाता रहे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
2: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും.
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं. इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी. इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी. राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है. राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे. एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है. ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है. ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है. ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है. उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है. केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती.
4: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी.
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
5: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
6: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आपने ट्यून किया है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानियां फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ। तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: कुछ कहो भी हमसे लौट ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
1: देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ।
0: हाय देखो कसम से

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज़ है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए। अफसोस है, अफसोस है।

0: मिलते ही नजर आए, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर, मिलते ही नजर आप मेरे दिल में आ गए।
1: आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। भरत व्यास के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

0: जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार, इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, फ्रिक्वेंसी 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से पहले प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावी नतीजों पर कांग्रेस व भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि नगर पंचायत व नगर परिषदों में पार्टी की एक तरफा जीत हुई है। कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
1: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय।
0: केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने समाज के सभी लोगों से पर्यावरण असंतुलन, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और नशे जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने जम्मू में एक कार्यक्रम में पंजाब, हिमाचल और दिल्ली से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल सरकारी प्रयासों से ही इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है और इसमें समाज की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि प्रभावी नेतृत्व किसी पद पर आसीन होना नहीं, बल्कि लोगों को साथ लेकर चलना, समाज की आवश्यकताओं को समझना और सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया।

0: कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
1: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं और ये एस्मा चलो डीसी साहब ने लगा दिया, मगर डीसी साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया, डीसी साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारी हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई है। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है, अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
0: इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है भारत का हरित पथ, संरक्षण से जलवायु कार्यवाही तक। वाचक स्वर है राकेश शर्मा का।
0: 21वीं सदी में विकास और पर्यावरण के बीच संबंध नीति विमर्श के हाशिए से उठकर राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया के केंद्र में आ गया है। भारत के लिए जैव विविधता संरक्षण और जलवायु कार्रवाई के साथ तेज आर्थिक वृद्धि का संतुलन बनाना खासतौर पर जटिल काम है। भारत के हरित पथ की कुंजी ये समझ है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास राष्ट्रीय प्रगति के एक दूसरे को मजबूत करने वाले स्तंभ है। इस दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन की मौजूदा वास्तविकता को ध्यान में रखा गया है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव सभी क्षेत्रों में ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है, लिहाजा देश ने इससे दूर का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की विकास की वास्तविकता के रूप में लिया है, जिसके लिए तैयारी और सक्रिय शमन की जरूरत है। इसके अनुरूप भारत ने एक ऐसा व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया है जो जैव विविधता संरक्षण को मजबूती देते हुए जलवायु अनुकूलता का निर्माण करता है और संवहनीय विकास को बढ़ावा देता है। भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु न्याय, समानता और संवहनीय विकास के लिए एक विश्वसनीय आवाज के रूप में उभरा है। इसका दृष्टिकोण दिखाता है कि संरक्षण और जलवायु कार्रवाई दोनों ही विकास को मजबूत करने वाले स्तंभ हैं। यह स्पष्ट करता है कि नागरिकों की समृद्धि और पृथ्वी का संरक्षण एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। भारत दुनिया के 17 अत्यधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। दुनिया के कुल भूभाग का केवल 2.4% हिस्सा होने के बावजूद यहां दुनिया भर में दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां पाई जाती हैं। ये देश 96,000 से अधिक पशु प्रजातियों और 47,000 पादप प्रजातियों का घर है, जिसमें दुनिया की लगभग आधी जलीय पादप प्रजातियां भी शामिल हैं। ये असाधारण प्राकृतिक विरासत संरक्षण

0: बढ़कर 33 हो गई है। इस विस्तार के कारण 8,610 वर्ग किलोमीटर का अतिरिक्त क्षेत्र हाथियों के संरक्षण के दायरे में आ गया है। वर्तमान में 15 राज्यों में 150 हाथी गलियारे चिन्हित किए गए हैं, जो हाथियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करते हैं। 2025 में प्रोजेक्ट चीता का विस्तार किया गया। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को छोड़ा गया। नियोजित विस्तार में नौरादेही और बन्नी घास के मैदान शामिल है। दिसंबर 2025 तक चीतों की कुल आबादी 30 तक पहुंच गई है, जिसमें भारत में जन्मे 19 शावक शामिल हैं। भारत ने 2019 और 2023 के बीच पहली राष्ट्रव्यापी हिम तेंदुए की गणना को पूरा किया। भारत में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 718 है। लद्दाख में 477 और उत्तराखंड में 124 हिम तेंदुए दर्ज किए गए। वहीं प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत 2021 में से 2023 तक किए गए देशव्यापी सर्वेक्षण में 6,387 नदी में रहने वाली डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है। वन्यजीव सप्ताह 2025 के दौरान प्रजातियों के संरक्षण के लिए 5 राष्ट्रीय स्तरीय परियोजनाएं, जिनमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर और प्रोजेक्ट घड़ियाल शामिल है, और नदी में रहने वाली डॉल्फिन, बाघ, हिम तेंदुआ और बस्टर्ड के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजनाएं और फील्ड गाइड जारी किए गए हैं, ताकि उनकी संख्या का सटीक आकलन और वैज्ञानिक तरीके से निगरानी की जा सके। इसके साथ ही सामयिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए एक बार फिर आपको ले चले आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले, और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
3: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
5: चलिए मैं रख देता हूं।
3: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया।
2: आइए सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
3: दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काछी फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्रें चुस्त करेगा। उसकी नजरों में गिर जाना मुंह से कालिख लगाने से कम शर्मनाक ना था। हमारे सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना

अच्छी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्द्वंद्व आजाद चहलकदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपनी साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया था। शाम होते ही उसने जोर शोर से प्रतिवाद का स्वर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिटकिरीदार मैने का निरंतर स्वर आ आकर कान के पर्दे को शक्त विक्षत करने लगा। कहां भाग जाऊं, बीवी ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने गुस्से में आकर कई डंडे रसीद किए, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था, न किया। बड़े संकट में जान थी, आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे में पांव रखते मेरी रूह कांपती है। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया था, अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो जरूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी ना निकलता था, मगर आज इस बकरी के कारण मुझे इस खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडलियां कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा होऊंगा और ये बकरी मेरी मालकिन रही होगी, उसी का प्रायश्चित इस जिंदगी में भोग रहा था। बुरा हो उस पंडित का जिसने ये बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है, बच्चा ना होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामत करनी पड़ती, और ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा, कहेगा आपने मेरे लिए क्या किया है, कौन सी जायदाद छोड़ी है। ये सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख ना होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे ये फिक्र सवार हुई कि किसी तरह रात की बेगार से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी, मैंने एक लंबी रस्सी मंगवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाल एक पेड़ की जड़ से बांध कर सो गया। अब चरे जितना चाहे, अब चिराग जलते जलते खोल लाऊंगा। छुट्टी थी ही, शाम को सिनेमा देखने की ठहरी, एक अच्छा सा खेल आया हुआ था, नौकर को भी साथ लिया, वरना बच्चे को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूं कि उसने रस्सी को 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विलाकुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। 1 घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था, वो अलग, ये तरकीब और भी तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं, अक्ल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने

0: पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख कर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। हाँ, वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है, कौन है रे, रे कहां से पत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
0: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के

0: बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
1: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
0: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकालकर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
1: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
0: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
2: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
0: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
2: मरकही है क्या बाबूजी?
0: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
2: अभी तो दूध देती है।
0: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
2: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
0: तुम्हारी मेहरबानी।
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रख कर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया, बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिये ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
1: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई।

0: मैंने कहा दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी, उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
1: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
2: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
3: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी, और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज़्यादा से ज़्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना ज़रूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है
0: जी। और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति

0: हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीज़ों को देखते हैं कि क्या चीज़ें थी जो हम नहीं जानते जिनके बारे में, वो बहुत
1: बिल्कुल
0: सारी जानकारियाँ।
1: हाँ, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कई संग्रहालयों में, उस समय के वस्त्र,
0: जी
1: पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किमखाप कैसा
0: जी
1: चलता
0: जी
1: था,
0: जी
1: मलमल कैसा होता था, तो
0: बिल्कुल
1: ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता
0: बहुत
1: है।
0: अच्छा लगता है। वजनदार चीज़ें जो दिखती हैं, ढाल तलवार ये सब कितनी वजन
1: हाँ,
0: वाली, कैसे वो
1: हथियार।
0: लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के ज़माने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
1: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको
0: जी
1: संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें, और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो हैं वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो
0: बिल्कुल
1: देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीज़ें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार
0: छूते
1: बार
0: हैं,
1: हाथ
0: हाँ
1: लगाते
0: वो
1: हैं।
0: सब नहीं करना चाहिए।
1: और कई बार जो चीज़ें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
0: रिंग सीट
1: रगर
0: लगा
1: रह
0: रखती है,
1: रहती है,
0: डोरी
1: हाँ
0: लगी रहेगी
1: डोरी
0: या
1: लगी, जिससे कि बाधक बाधा रहे ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब
0: अच्छा
1: पुराने
0: नहीं
1: बहुत
0: लगता
1: समय
0: है।
1: से संजो कर रखा गया है,
0: जी
1: इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
0: पहुँचाएँ, सही बात है। और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहाँ पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियाँ अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स में,
1: कई
0: तो बड़ा अच्छा
1: संग्रहालयों में
0: लगता है।
1: शोज भी होते हैं,
0: जी
1: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: उससे और भी ज़्यादा आपको पता लगेगा
0: बिल्कुल,
1: उस
0: करीब
1: वक्त के
0: पहुंच
1: बारे में।
0: जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो
1: और
0: चलिए
1: हम करीब पहुंच रहे हैं
0: गीत के।
1: गीत के।

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं। पहले स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं। हाँ, बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेब, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेब, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं। और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है।
0: तो बस आप,
1: ये मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री भी
1: पता लग जाएगा। तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताज़ा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताज़ा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज़्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे। और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं। और ख़ास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मज़ा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
0: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: जो मोबाइल शरारतें
1: कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है, झुंझलाहट होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय मोबाइल चलाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है, इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसरचंद।
1: और एक साथी लिखती है कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नज़दीक और नज़दीक वालों को दूर कर दिया है, साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं।

0: कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने,
1: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहाँ तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियाँ बन जाती हैं। इसे हम नज़रअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियाँ बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये ज़रूरी भी है, लेकिन इसके कारण के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
0: एक डोर में बांधे रहता था।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे, टाइम नहीं लगा रहेगा।
0: ये समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही हैं और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन लें।
1: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष तो पुरुष, बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुँच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज़ धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोएं तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो जबकि सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ बेड से आप दूर ही रखिए, मोबाइल मेज पर रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे ज़रूरी है कि आप मोबाइल को दूर ही रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं

कि मोबाइल काफ़ी चीज़ों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो

0: जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और
1: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूँगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है?
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज़ जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना ज़रूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज़ अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज़ पे, तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में ज़रूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो, तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो, पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज़्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी, बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी, प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है। और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
0: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स, एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते हैं।

0: इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आओगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर, जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज़ छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ।
1: जी
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है।
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज़ खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीज़ें साथ में खानी पड़ती है। दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन।
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, कठोर या कड़धान्य जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है ये बहुत ज़रूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट है, कुछ चीज़ें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके
1: जी
0: लिए हमें उसके फ़ायदे ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हम कॉम्बिनेशन में, जैसे मैं बताए, दो चीज़ें साथ में ले ले, तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं, या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं।
1: वाह
0: तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने ज़माने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज़ है, और हमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। और जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेज, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा
0: तो पहला अगर मैं देखूँ तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य हैं, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊँ तो वो उतने ही अच्छे हैं जितना मेरा दूध अच्छा है।
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल।
1: जी
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है। ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है।
0: हाँ जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज़ कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है।
1: जी आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से।
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या-क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहाँ तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद, 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40, वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का ज़माना है और ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज़ होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो ज़रूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीज़ें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज़ हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदें मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का ज़माना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट पे सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हम वो चीज़ घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज़्यादा बेहतर बन जाता है। उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ एक चीज़ गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज़ें वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉईल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाफ देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा, ये बताइए कि फ़ायदे तो होते हैं, प्रोटीन ज़रूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात सच है जब हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है, हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन नुकसान करता है,
0: वो कौन सी हैं?
1: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन

0: बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ़ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे उनकी किडनियाँ काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज़ परहेज नहीं करनी है,
1: प्रोटीन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और ज़रूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना ज़रूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज़्यादा नुकसान होगा।
1: जी।
0: उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं
1: एक
0: कि
1: मिथ होता है कि
0: बीज
1: बैंगन
0: वाले,
1: बंद कर दीजिए,
0: हाँ बीज
1: टमाटर
0: वाली
1: बंद कर
0: चीज़ें,
1: दीजिए।
0: बीज वाली चीज़ें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा इस मूवी से, ये वादा रहा
1: टाइटल
0: टाइटल
1: सॉन्ग
0: सॉन्ग।
1: सुनना है आपको?
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था।
0: राइट।
1: हम सुनवा रहे हैं

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है, वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन आप पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो,
0: अच्छा।
1: वो डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते, और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ वो लोड हो जाता है एक टाइम पे, कि
0: पचा
1: इतना
0: नहीं
1: सारा
0: पाएगा।
1: पचा नहीं पाएगा, और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो वो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है, और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है। अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो
0: ओ
1: जाएगा।
0: हो, हैवी हो जाएगा।
1: बिल्कुल वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज़। तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक गिलास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं, तो वो शक पॉसिबल भी है, और वो तब शरीर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर पाएगा, शरीर को पचाने के लिए समय मिल जाता है, और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज़ करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे। वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीज़ें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीज़ों की एक साथ ज़रूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है।
0: जी। तो इसका मतलब ये है, प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए तो थोड़ा थोड़ा करके, विभाजित करके लिया जाना चाहिए।
1: और एक सिर्फ छोटी सी चीज़ ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहाँ पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें। तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की ज़रूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है।
0: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें। तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
1: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से, तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज़ है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली। तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए, आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूँगी, वो हम कम करेंगे चलेगा। कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को, चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना है।
0: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में, इसका डिटेल बताइए आप।
1: ज़्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है। पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी ज़रूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में।
0: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं।
1: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे प्रोटीन कम करने की ज़रूरत पड़ती है। एक है जब लिवर इन्वॉल्व है। अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है। अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है। तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है। जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहाँ पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है। ये जितना वो प्रोटीन ज़्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया। तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं। और दूसरा है, जैसे मैंने बताया, किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज़ या क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जो होती है। अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज़ होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है,
0: सीरम क्रिएटिनिन,
1: करेक्ट। तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस ऐसी है जहाँ पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है, और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो।
0: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं, जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
1: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज़्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है।
0: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से?
1: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से। आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो, आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है, आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है।
0: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत। तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
1: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
0: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत आपने बहुत ही रोमांटिक सुनवाया और अपने दौर की बहुत ही रोमानी फिल्म रही थी जूली। आज के कार्यक्रम का जो विषय है, सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए ज़रूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन है वो है फैट सोल्युबल विटामिन। तो ये विटामिन्स के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स हैं जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हैं वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज़्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना ज़रूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज़ के रोज़ लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी ज़रूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो, अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये ज़रूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट ज़रूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफ़ी सारे खाने की चीज़ें ऐसी है,
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही ज़रूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक चीज़ कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन्स खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीज़न है प्रोटीन खाने का वो रीज़न नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
0: जैसे ऑरेंज है,
1: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियाँ लूँ तो जितनी कलरफुल सब्जियाँ ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना पता करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंजॉय कर रहे हैं।
0: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहतनामा कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
1: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
0: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन्स है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आँखों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब मेरी आँखें ड्राई हो रही है या कमज़ोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उससे ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
0: या
1: जिस
0: धुंधलापन।
1: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन्स कम है। और जो सोर्स

0: ई। अब ये भी एक फैट सोल्युबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
1: इसका और क्या काम होता है?
0: ये ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत, और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं कि सीज़न है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन्स आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
1: जी,
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज़्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है,
1: जी,
0: ये मेजर सोर्सेस है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हैं बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इम्प्रूव करता है,
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
0: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है।
1: जी,
0: तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीज़ों में रहती है, जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: नींबू
0: हैं,
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी 1% ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज़ देखी जाए तो मिर्ची,
1: ओहो,
0: मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन
1: हरी
0: सी होता है,
1: मिर्च।
0: हरी मिर्च में। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी, और देखिए आहार जो आपने बताया है कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियाँ होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज़्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन्स का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या ना दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए,
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीज़न से या कारण से ज़रूरत से ज़्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज़ नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज़ रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्ज़ी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीज़ें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के ज़रिए।
0: इश्क भुलावा, हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज़ की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप संतुलित आहार लीजिए, स्वस्थ रहेंगे।
1: जी, संतुलित आहार जो होता है, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूँ ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य, जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर,
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियाँ,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियाँ होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, पर ये ज़रूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन, ये सारी चीज़ें मेरा चौथा कंपोनेंट है। और आ जाता है मेरा फैट, यानी ऑयल या चर्बी जो होती है। नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है, और फैट्स बुरे नहीं हैं, ये हमें ताकत भी देते हैं। तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फ़ायदा करेगा। तो ये जब कंपोनेंट्स है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है पानी, जिसे हम ज़्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज़्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीज़ें, पांचों चीज़ें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरीस ले लो, या आजकल मॉडर्न ज़माना है, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज का ज़माना है, तो वो पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाएं इस चीज़ के पीछे
0: कितनी हमें आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही है, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
1: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतने ही खाएंगे, तो ये हमें ज़्यादा खाने से भी रोकता है। और ये ज़्यादा ज़रूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ़ है, डायबिटीज़, उनके लिए ये चीज़ बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज़ बहुत काम की है जिनको वज़न कम करना है
0: जी,
1: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत ज़रूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी ज़रूरी वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन्स या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीज़ें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजॉल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज़्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
1: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की ज़रूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
0: जैसे बीपी की गोलियाँ चल रही है,
1: तो मिलना ज़रूरी है, एक बार मिलना ज़रूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफ़ी बार हम चीज़ें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फ़ायदा कर रहा है, या ये चीज़ें हम अवॉइड कर दे रहे, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
0: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
1: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज़ के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज़ का नॉलेज है, उस चीज़ की इंफॉर्मेशन रहती है।
0: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
1: बिल्कुल,
0: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीज़ें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके काम करने का तरीका, उनके रहने सहने का तरीका, हर एक इंसान अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, वो एक चीज़ पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीज़ें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हमें चाहिए कि हम रोज़ खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज़ खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज़ दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इम्पोर्टेंस होता
0: जैसे
1: है।
0: जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डायटिशियन की सलाह लगेगी ही, बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन्स है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है गर्मी में, अभी वाटरमेलन की भी सीज़न है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीज़न चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीज़न को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ प्रिजर्वड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीज़न छोड़ के अगर ठंडी की सीज़न में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज़ करूँगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में, जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज़ तो कम से कम रखनी है। एक से ज़्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी ज़रूरत पूरी होगी, तब तक हमारी ज़रूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इम्पॉर्टेंट है, विटामिन्स इम्पॉर्टेंट है, सोर्सेज इम्पॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की ज़रूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीज़ों में एक चीज़ रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीज़ें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले, ये भी ज़रूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते, आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो, या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज़ कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज़ का, कि 4 घंटे से ज़्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात, कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीज़न है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज़्यादा ना हो, बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा, और जो हमें चीज़ें विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ ख़त्म कर ली, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। In Norway, Prime Minister Modi held bilateral talks with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Støre in Oslo a short while ago. Both leaders addressed the gathering after conclusion of their talks. Prime Minister Modi said India-Norway trade ties are strong and promising.
2: Norway ki yatra karke mujhe bahut khushi ho rahi hai. Yeh desh nature aur human progress ke beech harmony ka एक सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के

तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं भूमिका शर्मा के गाए इस भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:29 और 50 सेकंड हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम युवा मंच का।

0: हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों। आज के इस युवा मंच कार्यक्रम में स्वागत है हमारे तमाम युवा दोस्तों और श्रोताओं का। जी हाँ, आज बहुत ही न्यू सेगमेंट के साथ आज के ये कार्यक्रम का हमने आगाज़ किया है और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने ख़ास सेगमेंट नई उड़ान में एक होनहार और प्रतिभाशाली युवा से, जो एक गीतकार भी हैं और गायक कलाकार भी। जी, इन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत से गीत लिखे हैं और गाए भी। हम कोशिश करेंगे कि ये कार्यक्रम बहुत ही दिलचस्प बने हमारे तमाम युवा दोस्तों के लिए। जी, हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान अमन गढ़वालिया जी का अपने आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में। जी अमन जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी तो अमन जी, सबसे पहले युवा मंच में हम यही जानना चाहते हैं कि आजकल युवा तेजी से शॉर्टकट सफलता चाहते हैं, लेकिन एक कलाकार बनने के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है?
1: जी, जैसा कि आपने पूछा अभी कि एक कलाकार बनने के लिए कितनी मेहनत और कितना संघर्ष छिपा है, जो कि आजकल के कुछ नौजवान बहुत जल्दी जैसे खुद के गाने करते हैं और उनको ऑन एयर कर देते हैं, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे डाल देते हैं, तो उससे वो चाहते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी जैसे लोग उनको उनके गाने सुने, तो इतनी जल्दी नहीं होता है। एक गाना बनने से लेके उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत जैसे उनको पहुंचाने तक बहुत एक संघर्ष एक जुड़ा हुआ होता है, बहुत एक टीम काम करती है, एक प्रॉपर एक मैनेजमेंट काम करती है। तो मतलब कहने का मतलब कि वो गाना पहुंचाने के लिए मतलब लोगों तक और वैसे करने के लिए बहुत मेहनत का काम लगता है, तो जल्दी कुछ नहीं मिलता।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो क्या आपको याद है आपका पहला मंच प्रदर्शन?
1: जी मुझे आज
0: तो उस दिन की घबराहट ज़्यादा हुई थी या साहस, या कैसा रहा था वो आपका पहला जो प्रदर्शन था?
1: जी, मैं कहना चाहूँगा जैसे 2011 में मैंने पहली बार परफॉर्म किया था सुजानपुर होली फेस्टिवल, जहाँ की 2000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे स्टेज पे, जहाँ पे मैंने जिंदगी में पहली बार वहाँ पे परफॉर्म किया था एज अ आर्टिस्ट। तो मुझे ऐसा बहुत घबराहट जैसा मतलब फील था, बट जब स्टेज पे चढ़ गया तो भूल जाते हैं हम लोग सब कुछ। अगर आपको कुछ पाना है तो मतलब ठीक है, मतलब आर्टिस्ट को मतलब स्टेज पे चढ़ के भूलना पड़ता है सब कुछ, तो वैसा था थोड़ा सा मोमेंट, थोड़ा सा बढ़िया था।
0: जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में, नाम है आपका अमन गढ़वालिया, तो नेचुरल सी बात है कि आप गढ़वाल से बिलोंग करते होंगे।
1: जी हाँ जी।
0: तो थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे अपना बैकग्राउंड के बारे में, कैसे क्या, हाँ कैसे यहाँ तक आपका? जी
1: तो ऐसा है कि मेरे जो स्वर्गीय दादाजी
0: जी
1: वो थे गढ़वाल से, उत्तराखंड से, तो वो आर्मी को सर्व करते हुए यहाँ पे आए थे
0: जी।
1: तो उसके बाद वो यहाँ पे उन्होंने काफी टाइम आर्मी को सर्व किया, उसके बाद उनकी शादी यहाँ पे होगी हिमाचल में। आपको पता है कांगड़ा धर्मशाला की जो ब्यूटी है और जो नेचर है और जो वादियां है, उनसे
0: कह सकते हैं कि दादू का दिल आ गया।
1: अरे बिल्कुल, हाँ जी वैसा कुछ है जी। तो उनकी शादी यहाँ पे होगी, उसके बाद मेरे पापा जी, हमारे जितने भी पापा के कजन है सारे यहीं पे पैदा हुए
0: जी, जी।
1: तो उन्होंने यहीं पे ही काम किया, तो सेटल यहीं पे हो गए
0: जी।
1: जी
0: तो आप भी यहीं से और आपकी एजुकेशन वगैरह भी
1: जी
0: डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही?
1: जी, मेरी जो स्कूलिंग है वो कांगड़ा से हुई है और जो मेरी कॉलेज है वो धर्मशाला से हुई है
0: जी। तो हम सुनना चाहेंगे कुछ, क्या आप आज हमारे युवा दोस्तों को गुनगुना कर कुछ, आप गिटार भी साथ में लेकर आए हैं तो जरूर कोई ना कोई प्रस्तुति आप देंगे
1: जी
0: आज के इस कार्यक्रम में। जी प्लीज।
1: तो अच्छा, ऐसे है कि मेरा एक गाना 2023 में मैंने रिलीज किया था, जो कि मेरा डेब्यू सॉन्ग था तेरी मेरी बातें करके
0: जी।
1: तो मैं दो लाइनें उसकी सुनाना चाहूँगा, जिसका एक वीडियो भी मैंने रिलीज़ किया था, वो अभी यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको और मेरे गाने सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आपको मिल जाएंगे। तो हियर वी गो।
0: जरूर।

0: थैंक यू।
1: क्या बात है, बहुत ही खूब। आपकी आवाज़ में एक अलग भावनात्मक जुड़ाव महसूस होता है अमन जी, क्या ये स्वाभाविक है या फिर आपने खुद को विशेष रूप से तैयार किया है?
0: जी ऐसा है कि जब मैं म्यूज़िक में नहीं था
1: जी जी,
0: तो मे भी शायद हो सकता है कि मेरा वोकल, मेरा जो आवाज़ है वो ऐसी नहीं होती। बट जैसे हम लोग म्यूज़िक से जुड़े तो बहुत रियाज करने के बाद
1: जी,
0: बहुत उसको ट्रेन करने के बाद फिर जाके कुछ ऐसा हल्का फुल्का एक हासिल हुआ एक
1: जी
0: वोकल।
1: नहीं
0: जी
1: बहुत अच्छा है। और आज के दौर में बात की जाए रिमिक्स और ट्रेंडिंग म्यूज़िक का बोलबाला है, ऐसे में ओरिजिनल संगीत को बचाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण है?
0: जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे
1: जी
0: हमारे सांस्कृतिक और जैसे हमारा फोक म्यूज़िक है
1: जी जी
0: उसको लोग आजकल जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक में कन्वर्ट करते हैं
1: बिल्कुल
0: तो उसको डालते हैं, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो हमारी सांस्कृतिक म्यूज़िक है, जो हमारा फोक म्यूज़िक है, जो हमारा यहाँ का हिमाचल का जो म्यूज़िक है, उसको वैसे ही लोगों तक पहुँचाए जैसे कि वो ओरिजिनल बना हुआ है। और वैसे ही सारे गाने जिनको लोग रिमिक्स कर देते हैं, जो कि एक उनकी ना एक ऑथेंटिसिटी ख़त्म कर देते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो मुझे नहीं लगता कि वो सही है।
1: जी जी
0: जी हाँ जी।
1: तो जब आप कोई गीत गाते हैं तो पहले शब्दों से जुड़ते हैं या धुन से या भावना से?
0: जी देखिए ऐसा है कि अब बहुत सारी जगह पे जैसे हम लोग कॉन्सर्ट करते हैं, जैसे
1: जी
0: स्टेज
1: जी
0: पे जाते हैं, तो सबसे पहले मोस्टली तो लोगों से ही कनेक्ट करते हैं,
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: शब्दों से जुड़ना हो गया। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो म्यूज़िक से जुड़ने के बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है।
1: जी
0: तो मतलब दोनों अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी बीच में चीज़ें जैसे जुड़ती हैं, जैसे धीरे धीरे शब्द जुड़ेंगे, इमोशन जुड़ेंगे जुड़ेंगे, म्यूज़िक जुड़ेगा, उसके बाद फिर जाके वो एक गाने को शुरुआत मिलती है।
1: जी जी तो क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी गीत ने आपकी अपनी जिंदगी की यादें ताज़ा कर दी हों?
0: देखिए ऐसे बहुत सारे गाने हैं, जैसे दोस्ती पे,
1: जी
0: और हमारी मम्मी जी, माता जी जीयों के लिए,
1: जी
0: उनके लिए जैसे जो गाने हैं, तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, वो गाना लगता है तो हम एकदम कनेक्ट कर देते हैं अपने दोस्तों के साथ,
1: जी
0: अपनी माताएं के साथ, अपनी
1: जी जी
0: बहनों के साथ, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ और
1: जी
0: खुद के साथ। अगर जैसे कुछ जैसे लोगों को किसी से प्यार हो तो कुछ ऐसे रोमांटिक गाने चलते हैं तो लोग कनेक्ट कर देते हैं एकदम से कि हाँ यार ये मेरी स्टोरी पे एकदम कनेक्ट करता है। जी हाँ जी वैसे
1: जी बिल्कुल। तो कोई और गाना आप सुनाना चाहिए?

0: थैंक यू.
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया है. और एक उभरते कलाकार के लिए सोशल मीडिया आप क्या समझते हैं कि वरदान है या दबाव है?
0: जी बिल्कुल, सोशल मीडिया लोगों के लिए वरदान भी है
1: जी.
0: और दबाव भी है.
1: जी
0: देखो, जैसे मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि सोशल मीडिया लोगों के लिए वरदान इसलिए है कि उनको उनका काम लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सबसे सही प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया.
1: जी बिल्कुल.
0: कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, जैसे एज एन म्यूज़िक, मैं एज अ म्यूजिशियन मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, जैसे मैं गाने खुद के कर रहा हूँ, तो मुझे सोशल मीडिया पे लोगों तक पहुँचाने के लिए सबसे ईजी प्लेटफॉर्म लगता है सोशल मीडिया,
1: जी
0: जिसके थ्रू मैं अपने गाने पहुँचा पाऊँ. और दबाव इसलिए है कि जैसे मान लो हम जैसे कुछ काम कर रहे हैं और हम एक पर्टिकुलर स्टेज पे हैं कि
1: बिल्कुल.
0: हम लोगों तक पहुँचाना ही है,
1: जी जी
0: तो हमारे लिए वो दबाव भी है कि वो ज़रूरी है कि वहाँ से ही पहुँचाना है. तो सोशल मीडिया को दबाव इसलिए भी मान सकते हैं. और मतलब वो तो है ही, वरदान तो आप लेके चलो, सोशल मीडिया तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है
1: जी
0: लोगों का काम लोगों तक पहुंचाने के लिए. जी
1: बिल्कुल. आज के युवाओं के पसंद को देखते हुए संगीत जो है वो किस दिशा में बदल रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है, आपको क्या लगता है?
0: जी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आजकल के युवा वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल.
0: तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो उस म्यूज़िक को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उस कल्चर को भी अडॉप्ट
1: अडॉप्ट
0: कर रहे
1: कर रहे
0: हैं.
1: हैं.
0: तो म्यूज़िक बहुत सारी चीज़ें लेके भी आता है और छोड़ के भी चला जाता है. तो मतलब एक तरह से ठीक भी माना जाता है तो गलत भी कह सकते हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं हैं और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं अडॉप्ट करने के लिए, अडॉप्शन के लिए जो लोग उसके लिए जो आप पूछ रहे हैं मुझे.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी. हमें तो फिर इसके लिए यही है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, है ना, अपने संस्कृति अपना उनसे जुड़े रहना. और ज़रूरी है कि अच्छी बात है, हम अगर वेस्टर्न साइड से भी अगर जुड़ रहे हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से सीखें, है
0: जी
1: ना.
0: बिल्कुल.
1: जी, तो एक गीत लिखते समय अमन गढ़वालिया के मन में सबसे पहले क्या आता है, एक बार फिर से मैं यही पूछ रही हूँ.
0: जी
1: तो जब ये लिखने की बात है
0: ओके.
1: तो उसमें भावना या कहानी या फिर धुन?
0: जी देखो, वो तीनों अलग अलग पार्ट है जो
1: जी
0: आपने
1: जी
0: बोले. तो सबसे पहले जब गाना लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने ये गाना लिखा था तो
1: बिल्कुल.
0: आई वॉज इन कॉलेज, धर्मशाला में ही था मैं. तो एक स्टोरी थी मेरे दोस्त की, वो एक लड़की को पसंद करता था तो उसको कभी बोल नहीं पाया. तो उस वजह से जब मैंने वो गाना लिखा तो सबसे पहले मैं फीलिंग से जुड़ा, जो भावनाएं हैं उनसे जुड़ा कि वो क्या कहना चाह रहा है.
1: जी,
0: उसके
1: उसकी
0: बाद
1: स्टोरी पहले आपने सुनी पूरी,
0: जी,
1: है ना, उसके
0: हाँ जी,
1: बाद फिर.
0: तो उसके बाद उसको शब्दों में कन्वर्ट किया, उसको किया और उसमें लिखा, लिखने के बाद फिर वो धुन में उसको डाला, तो उसके बाद वो गाना बन के तैयार हुआ. तो इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है जी.
1: तो वो गाना भी हम सुनना चाहेंगे, कौन सा गाना
0: जी
1: होगा?
0: मैं अभी सुनाता हूँ, दो लाइनें सुनाऊंगा
1: जी जी
0: थोड़ा सा.
1: बिल्कुल बिल्कुल. बहुत

0: चलो बातों से बात निकली है तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके गीतों में आपके निजी जिंदगी की झलक भी देखने को मिलती है?
1: बिल्कुल, आप मेरे गानों में, मेरे जो पहला गाना है उस पर आप मतलब मुझे कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने उसमें जो लिखा है वो कहीं ना कहीं मतलब मेरे खुद की निजी जिंदगी से मैंने वो इंस्पायर्ड होके लिखा है।
0: तो वो भी हम सुनना चाहेंगे आज
1: जी। ओके।

0: क्या बात है, बहुत ही खूब। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे आप लिखते भी हैं तो क्या प्यार, संघर्ष, दोस्ती या समाज, किस विषय पर आपको ज़्यादा लिखना पसंद है? मतलब
1: तो मुझे मतलब आप कह सकते हैं मैं ज़्यादा सैड रोमांटिक टाइप कुछ वैसे गाने लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो कि देखो हर किसी का अलग अलग एक जेनर है ना, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा पसंद मतलब ज़्यादा प्रभावित करती है कि हाँ लोगों की जैसे लव स्टोरीज़ में उसमें सैड रोमांटिक। अभी मैं कुछ गाने अभी और लिखने वाला हूँ जो जल्दी आपके सामने यूट्यूब पे और सारे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएंगे। 8 से 10 गाने की एल्बम कर रहा हूँ अभी, तो मतलब मुझे पर्सनली सैड रोमांटिक प्यार भरे गाने ज़्यादा लिखना और सुनाना और गाना मुझे ज़्यादा पसंद है
0: जी,
1: जी।
0: तो छोटे शहरों और गांवों में आने वाले युवाओं को अक्सर मंच नहीं मिल पाता। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, एज एन अगर तो आप इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं तो अपने आप को बहुत मेहनत करें अपने ऊपर, और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके सोशल मीडिया पे लेके आए, जिसके थ्रू एक मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों से जुड़ता है।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो छोटे शहरों के और गांवों के लोग हैं जो अगर तो आर्टिस्टिक फील्ड में है या किसी भी आर्टिस्ट फील्ड में है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि उनको स्टेज नहीं मिलता
0: बिल्कुल
1: और उनको वैसा मतलब एक रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता कि जितना अच्छा वो काम अभी करते हैं ना। कुछ ऐसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं और खुद भी मैं उस लाइन से निकल के आया हूँ। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से या बहुत एक बढ़िया, वैसे मैं भी एक नॉर्मल घर से निकल के आया हूँ। तो वो मेरा एक मैसेज है कि लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए बहुत आगे तक, और उनको अपना मतलब एक वो धैर्य नहीं तोड़ना चाहिए
0: बिल्कुल
1: जी।
0: जी। अच्छा, प्रतिभा के साथ क्या धैर्य और अनुशासन भी उतना ही जरूरी है?
1: एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मतलब काम करते वक्त या काम करवाते वक्त धैर्य और अनुशासन सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, छोटे छोटे पार्ट हैं।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि जैसे अब देखो आर्टिस्ट, मैं तो आर्टिस्ट हूँ उसी फील्ड में बात करूँगा,
0: जी
1: तो जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं
0: जी
1: तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है।
0: बिल्कुल
1: तो कुछ लोग जैसे हम ही हैं कई बार चाहते हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी हम आगे पहुँचा दें,
0: जी
1: लेकिन जो टाइम और समय जो लगना है उसमें, जो जिसका हमें धैर्य रखना पड़ता है और अनुशासन से चलना पड़ेगा कि हाँ इसको पहुंचाने तक या इस काम को करने के लिए इतना ही वक्त लगेगा, तो वो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अनुशासन, धैर्य और तीसरा क्या बताया आपने,
0: प्रतिभा जो है वो तभी
1: प्रतिभा।
0: निखरती है। और अगर असफलता मिल भी जाए तो सफलता के बारे में हमें सोचना चाहिए, कभी ना कभी वो ज़रूर आपके कदम चूमती है
1: एग्जैक्टली
0: ना?
1: हाँ जी।
0: तो अगर आप गायक नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते? आपने कभी कुछ और
1: जी
0: भी सोचा था अपने लाइफ को लेकर
1: जी
0: आगे? जी
1: तो जब हम छोटे थे मतलब
0: जी
1: अभी भी छोटे हैं, अब बड़े तो नहीं हो गए,
0: जी बिल्कुल
1: बट हाँ जब हम लोग स्कूल में थे तो थोड़े से अच्छे थे पढ़ाई में, थोड़े से बढ़िया। तो
0: क्या बात है।
1: मेरा इंटरेस्ट था जैसे कंप्यूटर साइंसेज में,
0: ओके,
1: जो मतलब इंजीनियरिंग लाइन
0: इंजीनियरिंग
1: में,
0: लाइन में। ओके
1: तो मुझे वो चीज़ पसंद थी
0: जी
1: ऐसा मतलब जब मैं ऐसा मैं यंग था, जब मैं यंग स्टूडेंट था। बट जब हम लोगों ने टीवी देखा, यूट्यूब देखा, सोशल मीडिया देखा और धीरे धीरे उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते गए
0: बिल्कुल
1: कि हम लोगों को नहीं, हमारे लिए ये फील्ड बनी हुई है, हम
0: ज़्यादा
1: लोग एज अ आर्टिस्ट हमको बनना है, हमें मतलब उसके बाद जाके हमें वो रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये काम तो कर सकते थे लेकिन ये काम हमारे लिए बना है, इससे
0: क्या
1: हमें खुशी मिलती है
0: इंटरेस्ट जिसमें
1: जी।
0: ज़्यादा हो। मैं भी यही मतलब मैसेज आपके थ्रू देना चाहूँगी अपने युवा दोस्तों की, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप बेटर से बेटर कर सकते हैं जिस
1: जी
0: काम को, वो ही करना चाहिए।
1: हाँ
0: जी
1: जी
0: हाँ, तो आप ऐसा कौन सा गाना है जो आप जिसको आप बार बार सुन सकें? कुछ ऐसा कोई है गाना?
1: देखिए वैसे तो आप मेरा गाना भी बार बार सुन सकते हैं, तेरी
0: जी
1: मेरी बातें बट हाँ
0: बिल्कुल
1: एक गाना मैं मोस्टली जब मैं मतलब स्टेज भी कर रहा होता हूँ प्राइवेट शोज़ या कभी किसी होटल कैफ़े में कभी परफॉर्म करूँ,
0: जी
1: तो मैं एक गाना ज़रूर गाता हूँ जो कि बहुत सारे युवाओं युवतियों को बहुत पसंद आया और वो
0: ओके
1: हमेशा ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये गाना आप गा दो, तो मैं 2 लाइनें सुनाऊंगा।
0: बिल्कुल

0: बहुत ही खूब, बहुत खूब। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई एक सपना जो अभी बाकी है।
1: वैसे तो देखिए, अभी मैं खुद को बहुत पीछे दिखता हूँ एक एक कलाकार के तौर पे, और एक इंसान के तौर पे भी मैं खुद को बहुत पीछे दिखता हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ लोगों तक पहुँचाना है। तो वैसा है अभी मैं, मतलब उतना लेवल पे, बट मेरा एक सपना ये है कि मैं खुद को उस लेवल पे पहुँचा दूँ जहाँ पे आप मुझे पहचाने कि यार ये हमारे पास बैठा हुआ था,
0: स्टूडियो में आए थे, हमने बात की थी।
1: हाँ जी, कि आप मेरी फोटो देखे और पहचाने कि यार ये अमन गढ़वालिया जी हैं जो यहाँ आए थे मेरे पास। जी
0: हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा। और चलते चलते हम आपसे युवा मंच के माध्यम से देश भर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: जी, तो मैं ये संदेश देना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नशा जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, मतलब हमारी निजी ज़िंदगी में हम आसपास देखते हैं आजकल के लोग बहुत नशे में हैं, और देखिए वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि वो सही है।
0: हमारा युवा वर्ग खासकर बिल्कुल चपेट में आ रहा है इस चीज़ के।
1: जी हाँ, तो उनको यही मैसेज मेरा है कि नशे से जितना हो सके दूर रहें, और उसको बिल्कुल भी प्रमोट ना करें, और बिल्कुल नशा करें भी ना।
0: जी,
1: और अगर वो किसी चीज़ को, अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हैं,
0: जी,
1: किसी काम को लेके या किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, तो उसको जी जान लगा के करें
0: जी।
1: तो उससे क्या है कि आपको सफलता जल्दी से जल्दी मिल जाएगी
0: जी,
1: और अगर नहीं भी मिल रही तो दोस्ती अभी, दोस्तों अभी कहानी अभी बाकी है,
0: बाकी है बिल्कुल।
1: जी
0: जी, बहुत अच्छा लगा अमन जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इस नए सेगमेंट में आपने, नई उड़ान में आपका आज पहला ये हमारा प्रोग्राम था, और बहुत अच्छा लगा होगा हमारे युवा दोस्तों को जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, सपनों का सुर देने वाले कलाकार कभी सिर्फ गाने नहीं गाते, वो भावनाओं को आवाज़ देते हैं। आज युवा मंच में हमारे साथ रहे उभरते गायक और गीतकार अमन गढ़वालिया, उम्मीद है उनकी बातें युवाओं को अपने सपनों के प्रति और अधिक प्रेरित करेंगी। तो चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पॉल सिंह, और हमें तकनीकी सहयोग मिला अंकित धीमान से। अब अपने रेडियो दोस्त रेणु मनकोटिया को दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:56 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं आज प्रसारित और लेके जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

आपसे थोड़ी देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे सदाबहार गीत। शाम 6:30 पर कार्यक्रम उजागरणियां प्रसारित किया जाएगा और आज का विषय रहेगा गर्मी के मौसम में पशुधन की देखभाल। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसानवाणी, विषय रहेगा मधुमक्खी पालन रोजगार का उपयुक्त साधन। साथ ही होंगे मंडी भाव मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए लोकगीत। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम में एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा संगीतकार अजय अतुल के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 पर हिमाचली लोक गीत और गीत प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10:00 से 11:00 तक आपकी पसंद गीत हमारे ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:59 और 11 सेकंड हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 12 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
0: शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
2: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की एसडीएम शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
3: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के, और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग, कहते ना हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी या अलग अलग काम है, और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, एआई आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और टीबी उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 को होने को हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार संगीत।

सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आज के सदाबहार संगीत में। और आज मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया। तो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हेमलता के गाए अखियों के झरोखों से फिल्म के इस गीत के साथ।

सदाबहार संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोहनी महिवाल फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है शब्बीर कुमार और आशा भोंसले ने।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहना जो केसरो दी दो जोड़ी करी राम राम। किसान साथियों ट्याले पर जड़ी ऐसे मैं आई हूँ कने मिंजो कने आज हरिया जी जड़े इनसे मेरा साथ दिया कर दें। तो हरिया जी तो अंजो भी राम राम।
1: केसरो जी तुहन जो भी राम राम। और देखा जो बड़े दिनों बाद तुहने मौका मिले गपशप लगाने दा।
0: बिल्कुल ट्याला जड़ा ऐसे साड़ा ऐसा ऐसी जगह है जिथू अहाँ कोई ना कोई किसान भाई आई करी संजा दे बेले गलबात भी कर देन कने बोल देन लोग जानकार भी सुन देन
1: जी
0: कने। हरिया जी दिखा गर्मी के बारे दसा अच गर्मी कदे ही रही।
1: गर्मी तो देखा पहले लोग बरखा ते परेशान थे हूँ गर्मियों ते परेशान है। तो देखा ये परमात्मे दे रूप है रंग रूप इन्हें जो अहम जो सहन करने पौना। और जिया मौसम भी वैसे गर्मियाँ रही है और गर्मी होना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा तो हाँ बिल्कुल ठीक गल गलाई कि पहले जड़ा ऐसे बड़ी बड़ी बरखा थी वो आकर दी कने हवा तूफान जड़ा ऐसे रोज आई आकर दा। पर आज जड़ी गर्मी पई ऐसे बड़ी तेज पई है क्योंकि आज जड़ा है ऐसे गर्मी लगी भी है कने दिखा दूई गल हरिया जी पुराने समय की गल अगर अहाँ करिए तो पुराने समय च घर जड़े होंगे से मिट्टिया के होंगे कच्चे घर होंगे थे
1: जी।
0: कने तीन अजे बोलते ना कि गर्मियों से ठंडे रेंदे हे कने सर्दियों से गर्म रेंदे हे। पर अजकल के जड़े साढ़े लेंटर हैं ना पक्के सीमेंट कने ईटा घर से एकदम तपी आते हैं।
1: जी जी जी और देखा फिर तो अंदर रहना भी मुश्किल हो जाता क्योंकि कई लोगों देखा टीना भी पा रही अगर टीन भी तपी जाती तां भी फिर जे ऐसे सारी कमरा जहा गर्म हो जाता दीवारा गर्म हो जाती धुप्पा ने। तो मतलब देखा तुम्हें ठीक बोला दे कि जिया पुराने मकान होंगे थे तो तीन मिट्टी के मकान थे तो तिना च रहने का अपना ही मजा था।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल कने अजकल दिखा होना हाँ जो अपनी गर्मी ते बचाव भी रखना चाहिए कने अपने आप चो बोलते ना कि गर्मी च ज़्यादा पानी का सेवन करना चाहिए कने अज अहाँ ट्याले पर जरूर गलबात करनी अपने पशुधन के बारे च क्योंकि गर्मी है जी इंसान जो ही नहीं लगदियाँ पशुधन जो भी बड़ी गर्मी लगती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो तिना की देख रेख जरा ऐसे गर्मियों बड़ी भरी करना पौती है क्योंकि साड़ा पशुधन जरा ऐसे साड़ा अपना एक आमदनी का साधन भी है कने घरे का सदस्य भी होंगे है। तो जी अहाँ अपना ख्याल रखते तियाँ पशुओं का ख्याल रखना भी साड़ा काम है ना जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखा अज सारे दे बड़ी तो देखा खैर घरें तो लोगें घट करने ला रहा है काम पशु पालने का
0: जी
1: लेकिन सड़कों पर देखते हैं जेड़े पशु लोगें छड़ी रहे
0: जी
1: तो देखा तिन्हारा क्या हाल है। इतनी गर्मी विच ना किसी से बैठी सकते ना किसी से चैना ने खड़ी सकते। तो बोलने का मतलब यही है कि सारे से बड़ा देखा अहम का यही फर्ज है कि उन्होंने पशुओं वास्ते जो है एक हमदर्दी हर आदमी के दिल में होने चाहिए। बेशक जिन्हें छड़ी भी दिती रहे तिन्ह जो तो कुछ बोल ही नहीं सकते
0: जी
1: पर यह है।

0: जेह्ड़ा अहंदे सामने चीज़ां ही उन्हां पर जे असें अहें कुछ ना कुछ काम करी सकदे तो देखो सारें दे बड़ी गल है जियां तुसीं गर्मियां दी गल बोला दे तो सारें दे बड़ी तो देखो पानी दी समस्या है उन्हां दी
1: पानी दी समस्या
0: गर्मी तो है ही है पर सारें दे बड़ी कि पानी कुती पींगे सब
1: बिल्कुल जी बिल्कुल आ रही है जी तो हाँ बिल्कुल ठीक गल गलाई है कने आज दिखा गर्मियां हुण होई करा दियां तां हुण पशुओं दा भी खास ख्याल रखना पौना है और गर्मियां च हाँ अपने पशु दा ख्याल कियां रखना है इस पर हाँ गलबात जरूर करनी है
0: जी।
1: पर दिखा कार्यक्रम मौजां ग्राएं दियां है तो भई मौजां जिहड़ियां से कार्यक्रम च लगना चाहीदियां
0: कन्ने कन्ने मौजां भी लगाने कन्ने कन्ने कन्ने जानकारी
1: भी
0: देनी
1: है
0: देनी
1: तो
0: है
1: इस जानकारी जो हाँ जरूर अपने किसान भाइयों कने साझा करना है पर पहले अहां सुनी लैंदे निक प्यारा दिया लोक गीत है ना जी कने
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: जी
1: एक स्नेह भी हैं जेडे कि अहां अपने किसान भाइयों बहनों तक पुजाने हैं तो चलते हैं पहले सुनी लैंदे हैं लोक गीत कने कुछ एक स्नेह
0: जी
1: इसके बाद अहां जरूर इस पर गलबात करनी है
0: जी
2: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
3: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
2: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
3: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
4: Nexa.
5: डीजल क्यों चूज कर रहे हैं जब स्मार्टर ऑप्शन है यही इंट्रोड्यूसिंग नई मारुति सुजुकी अरीना की विक्टोरियस SCNG सेगमेंट फर्स्ट अंडर बॉडी CNG टैंक के साथ 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का माइलेज मतलब ज्यादा सेविंग्स कम खर्चा और अब विक्टोरियस खरीदने पर पाए एक्सचेंज बोनस अप टू 50,000 तो देर किस बात की आज ही अपने नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना डीलरशिप विजिट कीजिए मारुति सुजुकी SCNG स्मार्टर फ्यूल स्मार्टर यू TNC अप्लाई

0: किसान साथियों तो दुहा दिखा प्यारा दिया लोक गीत जरा इसे संझा के वेले सुने कहीं संझा का टाइम जोड़ा है सह ऐसा होंगे कि हाँ अपने काम काज तो करते करते सोगी सोगी चलू सो लोग गीत सुनने को मिल जाते तो थकान भी दूर हो जाती है कहीं काम करने का होर मजा आता है क्या बोलते आरिया जी।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखा सारे तो वीडी तो किसरो जी यही गल है कि देखा पूरा दिन मतलब चाहे आते किसान साथी धुप्पे भी काम करते पर इत वेला जो टियाले पर आई जाते तो देखा एक तो एक ही दुए ने मिली ने इं दिल खुश हो जाता कहीं दूजे देखा टियाले पर कितनी बढ़िया देखा ठंडी हवा चलती तो इस बीच जो है तो गर्मियों का पूरे दिन जितना भी मतलब सहन किते रहो उससे सारा जो है एक दुख जो है दूर हो जाता।
0: बिल्कुल कने साढ़े टियारे पर जड़ी हवा बजती है ना से बड़ी अच्छी बजती है कने ये पंखे पुंखे जड़े ना से अंदर ही खरे लगते कने तिना दी इतनी हवा नहीं होंगी जितनी कि इतू टियारे पर जड़े बूटे लगे होने इतने भरी तो
1: जी
0: इन्हों का बड़ा फायदा तो दिखा बूटे जड़े साझे वास्ते बड़े जरूरी तो जरूर बूटे लगाना चाहिए।
1: बिल्कुल देखा तो ही बोलते दे कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही जो है अहंदा वातावरण भी स्वच्छ रहना और अहंदा जेड़ा आस पड़ोस आ उस विच भी स्वच्छता बनी रहनी और अहंदे जेड़े पशुओं की अह गल करा दे थे उन्हें जो भी चारा ता ही मिलना जी अगर देखा अहंदे पर्यावरण विच जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल कहने दिखा इस लोकगीत से पहले हाँ गल करा करते थे कि गर्मियों के मौसम च अहाँ अपने पशुधन का ख्याल जड़ा से किया रखना क्योंकि गर्मियां बड़ी बड़ी तपा कर दियां तो किसान साथियों सब तो पहले गल तो ये ध्यान रखना चाहिए है कि पशुओं जो साफ कने हवादार स्थान होना चाहिए ना जी जी गुराला है ना सब बिल्कुल साफ सुथरी सुखियाँ होना चाहिए कने हवादार होना चाहिए। कई बार हाँ गुराला बनाए तो लेंदे पर खिड़कियां जी जरा जरा छोटे छोटे झरोकू रखते इस कने हवा जी इसे इतनी ज़्यादा जाए नहीं पाती तो तू कोशिश करा कि बई तिना खिड़कियां खरी बड़ियां रखा ताकि हवा जी इसे आँदी जाती रहे गुराला च।
1: और तो और देखा आज मतलब जियां लोग पशु पालने का शौक रखते तो
0: जी
1: देखा उसे तो मतलब खिड़कियां भी जाली वाली लगाते और दरवाजे भी जाली वाले भी क्योंकि जियां
0: बिल्कुल
1: अहां जो गर्मी महसूस होंगी तो अहां दे पशु भी तो वो चीज़ा महसूस करते।
0: बिल्कुल तो हाँ ठीक गल गलाई कने दिखा उन्हें जो समय समय पर जरा से पौष्टिक चारा जरूर देना चाहिए है साफ पानी भी देना चाहिए कई बार यहाँ क्या करते कि पानी की बाल्टी या टब जरा भर के रखी देंगे कने पशु से अहाँ सोचते पी लेंदा पर कई बार इसे डोली भी देंगे तभी अंज लगता कि साड़ा पशु जरा से पानी पी लिया होगा पर इसी समय समय पर अपने आप जाई करी ठंडा पानी जरा सत्यों जो देना चाहिए
1: बिल्कुल
0: कने सोगी पशुओं की रहने की जी जगह है ना हरी है जिसे बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए जी हाँ अपने घर रोज़ साफ सुथरा रखते हैं झाड़ू पोचा जोड़ा ऐसे समय समय पर करते हैं तो इस हिसाबे ने तिना का भी ग्रां का खास ख्याल रखना चाहिए है कने गर्मी सर्दी या बारिश जोड़ा भी मौसम होंगे तिस तिना की साफ सफाई कने उचित व्यवस्था जरूर होना चाहिए है कने अजकल हाँ गल करा करते हैं गर्मिया की तो गर्मियों दिखा सवेरे तुम दिने पशु जो अपने ग्रां के अंदर ही रखना चाहिए क्योंकि धुप बड़ी तेज़ होंगी पर संझा के टाइम जी इस टाइम अहाँ टियाले पर बैठे हो ना थोड़ी देर अगर थोड़ा पशु चरता है तो तिस चो बहर जरूर कढ़ना चाहिए चराना चाहिए थोड़ी देर बाहर की हवा भी तीसियों मिलना चाहिए
1: बिल्कुल। और अगर सुरक्षित है तुम्हारी जगह मतलब जिथे कोई जंगली जानवर नहीं कोई खतरा है तो राती जो भी तुम अपने पशुओं जो अजकल जो है बाहर रखी सकते
0: बिल्कुल
1: क्योंकि दिने तो तुम्हें देखा 8-9 बजे तक बिल्कुल धुप तेज हो जाती और 4-5 बजे तक जो है असें अपने पशुओं जो बाहर नहीं कढ़ी सकते तो देखा जे थोड़ा सवेरे सवेरे जियां 5 बजे निकाली सका है और उसके बाद 8-9 बजे के बीच अंदर करी ते और सारे से बड़ी गल जे तो पानी का बिल्कुल अजकल गर्मियों जियां सर्दियों फिर भी पशु घट पानी पीते लेकिन
0: जी
1: गर्मियों का मौसम है

0: केसरो जी तो देखा ये लोग ही सुने और हाँ जो उम्मीद है कि हाँ दे किसान साथियों जो
1: बिल्कुल
0: जरूर पसंद आया होना। तो
1: जी जी
0: देखा पशु धन दी देखभाल दी तो अहें गल करा दे ही आए, पर
1: बिल्कुल
0: देखा होर भी गर्मियों के मौसम बिच जेडे आहरे पानी दे स्रोत है जिंया कुएं बौड़ियां ही आहां दी
1: बिल्कुल
0: पुराने स्रोत है। तो देखा तिनारे पानी का कुछ अपना ही मजा होंदा, और
1: जी
0: गर्मियों तक खास कर देखा अगर तुहें फ्रिजरा पानी पींदे तिस्ते भी कई बार बीमार होने का खतरा रहा या होर कई बीमारियां लगने का खतरा रहा। लेकिन जेडे आहांदे पड़ोस बिच चाहे पुराने कुएं चाहे बावड़ियां ही उन जो जरूर इस टाइम जी ऐसे बिल्कुल साफ कर लेना चाहिंदा, और अगर हो ही सके तो ज़्यादा तो ज़्यादा पानी जी ऐसे बावड़ियाँ रखने कुएं रा ही पीना चाहिए, क्योंकि फ्रिजा दे पानी दा सिर्फ थोड़ी देर लगता कि बड़ा ठंडा पानी है मज़ा आता,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उसके जेडे नुकसान ने सह भी घट नहीं है।
1: बिल्कुल कन्नै दिक्खा हरिया जी, पानी दे स्रोत जेह्ड़े न साढ़े बड़े बजुर्गां द्वारा जेह्ड़े संभाले हो ना, हुन ते
0: जी
1: नोए स्रोत ते बनने नहीं, पर बोड़ियां कन्नै जेह्ड़ी कुल्लां न या फिर बावड़ियां न, इन्हां जो साढ़े बड़े बजुर्ग जेह्ड़े असें संभाली संभाली के रखदे हे, साफ सफाई दा ध्यान रखदे थे। अजकल भी सानूं सही काम करना चाहिदा, इन्हां बोड़ियां जो संभाली के रखना चाहिदा है, इन्हां दा पानी जेह्ड़ा असें गंदा ना होए, समय समय पर इन्हां दी सफाई करनी चाहिए है।
0: जी
1: और जियां साढ़ियां नदियां तालाब कुएं या झरने जेहड़े भी हैं ना, इन्हां च गंदगी नहीं करना चाहिए। अजकल दिक्खा गर्मियां दा समय है, तो अहां क्या करदे कि कोई छुट्टी आउंदी है, अहां अपने बच्चों कन्नै या रिश्तेदारों कन्नै घूमना फिरना चली जाते हैं, है ना,
0: बिल्कुल
1: कने अहां ते उत्थू जाए के सेल्फी भी लैंदे, है ना, फोटो भी लैंदे, खांदे पींदे भी हैं, तो खाई पी करी जेहड़ा भी साढ़ा जेहड़ा कचरा हुंदा समान हुंदा से अहां तिना नदियां नालियां च जेहड़ा से सुट्टी के आई जांदे। ते जेहड़ा
0: जी
1: प्लास्टिक है, प्लास्टिक दे बारे च अहां बहुत ज्यादा गल करदे न कि भाई प्लास्टिक दा इस्तेमाल बंद होना चाहिए, पर फिर भी प्लास्टिक जो बिल्कुल बंद तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बाजारों से तो समान सन जो प्लास्टिक के पैकेटों
0: जी
1: च मिला था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इसका जो निपटान जो ऐसे सही तरीके ने जो करना चाहिए कि तिसियो अहाँ इतू थू ना सुटन।
0: और देखा सारे की वड्डी गल जी साफ सफाई जी हाँ अपने आस पड़ोस च तो रखनी है, पर अंदर बाहर भी जाते उत्थे भी जरूर ध्यान रखना कि एक हाँ जो अपनी जिम्मेवारी समझी करी ये चीज़ा सोचने चाहिए। और एक गल होर देखा सारे की वड्डी कि जहें पानी की गल करा दे पहले भी तो
1: जी
0: मतलब जी चलो पशु हाँ रे जेडे घरें बनी रहे तिना वास्ते तो अहें गल की कि हाँ जी ध्यान रखना पानी समय समय पर आवारा पशुओं वास्ते भी अहाँ कोई एडी व्यवस्था करनी।

0: कि जिहड़े अहां दे गांव च घूमे है या फिर सड़कां पर, तो मतलब किती ना किती कुछ बंदोबस्त होना चाहिए कि उन्हें जो जे असें टाइम पर पानी, और जिहड़े अहां दे पक्षी है सारे ते वड्डी गल है,
1: जी
0: उन्हें वास्ते भी देखा अहां दे पुराने बजुर्ग भी कितने समझदार होंदे थे, उन्हें दी उन्हें गल्लां पर अहां जो जरूर अमल करने चाहिए। तो मतलब पशु पक्षियों वास्ते भी जे असें पानी वास्ते कोई कटोरा पेड़ पर लटकाई देना चाहिए, ताकि अहां दे जे पक्षी है सै भी बेचारे बोल ही तो नहीं सकते, पर जरा उन्हें भावनाएं जे सै समझ सकें, तो जरूर से भी मतलब पानी से वंचित ना रहे।
1: जी जी बिल्कुल। करे दिखा किसान साथी होना टियाले पर, हाँ चलते चलते सुनना एक होर प्यारा दिया लोक गीत है ना
0: जी
1: जी।

0: किसान साथियों, इस लोकगीत कने ही कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया दा समय जड़ा से इतु संपन्न हुआ करदा। जाने ते पहले तुहानू दस दईए, अज तकनीकी सहयोग सहायता अंकित धीमान होरां ने और कार्यक्रम प्रस्तुत करता जितेंद्र पाल सिंह कने। हुण इस लोकगीत कने सांझो दोनों जुदे अनुमति।
1: अच्छा जी, जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजां ग्राइंदियां। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति

0: व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जाँच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi held restricted and delegation-level talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo today. The two leaders agreed to elevate India-Norway relations to a green strategic partnership, marking a significant milestone in enhancing cooperation in the fields of clean energy, blue economy, and green transition. During the talks, the leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations and agreed to further strengthen cooperation in several areas. In a joint press statement, Prime Minister Modi said, "The India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity."
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
2: The Prime Minister also welcomed Norway's decision to join the Indo-Pacific Oceans Initiative. Prime Minister Gahr Støre conveyed strong support for India's in the global fight against terrorism. The leaders also agreed to enhance cooperation in multilateral fora. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said that discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0, and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. Talks also set a goal of doubling bilateral trade in the next 5 years. Mr. Modi thanked the people of Sweden, the government of Sweden, and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's tour reports that a defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government. The BJP has said that it is a matter of immense pride for every Indian that Prime Minister Narendra Modi has been conferred with the Sweden's highest honour for a head of government, the Royal Order of the Polar Star, Commander Grand Cross. Briefing reporters in New Delhi, BJP spokesperson Sudhanshu Trivedi said that this recognition marks the 31st international honour bestowed upon Prime Minister Modi. He said this honour is not merely a recognition of Mr. Modi as an individual, but a symbol of establishing the potential and excellence of 140 crore Indians on the global stage. CBI has arrested 10 accused so far in neat paper leak case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. In the last 24 hours, CBI has also conducted searches at 5 locations at various places and seized several incriminating documents, laptops and mobile phones. The investigation conducted so far has brought out the actual source of the leakage of chemistry and biology papers which were circulated before the exam. The Enforcement Directorate has arrested Aam Aadmi Party AAP leader Deepak Singla in an alleged bank fraud case. Earlier, the agency conducted searches in Delhi and Goa in the case against Singla and other hawala operators this morning. It is alleged that he is handling the hawala operations for the fund movement for the Aam Aadmi Party between Delhi and Goa and defrauded Oriental Bank of Commerce of more than 150 crore rupees. A high-level U.S. industry delegation held discussions with Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh in New Delhi today. The deliberations were held on emerging opportunities for private investment and industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation includes senior representatives from the U.S. nuclear industry, business stakeholders and officials associated with India-U.S. cooperation in civil nuclear energy and advanced technologies. In IPL cricket, Chennai Super Kings won the toss and opted to bat against Sunrisers Hyderabad at the M.A. Chidambaram Stadium. The match will begin at 7:30 p.m. In the latest standings, Sunrisers Hyderabad are currently placed third with 14 points from 12 matches, having won 7 matches so far, and remain firmly in the playoff race. And that is the end of this news bulletin.
1: Bharat aur Europe apne...
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:10 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान कने बागवान भाई बहना जो कने न्याणिया जो भी केसरो दी दुआ जोड़ी करी राम राम। कने एक बारी फिर से तुम दस दिए कि अज टियाले पर मिंजू कने हरिया जी। हरिया जी एक बारी फिर से तुम राम राम।
1: एक बारी फिर तुम जो भी केसरो जी राम राम।
0: कने सोगी ही किसान भाइयों जो भी राम राम,
1: राम
0: है ना जी
1: राम सारे जो। हाँ जी
0: बिल्कुल। ता किसान भाइयों दिखा उन द्वारा ते हाँ टियाले पर जड़े से आई है कार्यक्रम किसान वाणी लेकर ही कने तीस चाह तो कने कर देन गलबात जानकारियां दा पिटारू भी खोल देन कने जानकारियां भी दिन देन
1: जी।
0: सोगी ही तुहाड़ा जड़ा मनोरंजन भी करवा देन प्यारे प्यारे लोक गीत सुनाई करी। कने अज जड़ी जानकारी हरिया जी हाँ किसान भाइयों देनी है सह है मधु मक्खी पालन दे बारे च।
1: जी
0: वैसे तो साड़ा जड़ा किसान है युवा किसान है सा जागरूक हो चुके हैं अजकल आमदनी वास्ते जड़ा है सा जरूर कई युवा बाहर जा कर देन अपने देश अपना प्रदेश छड़ी करी पर बहुत सारे युवा जड़े इनसे इतू रही करी बहुत सारे ऐसे रोजगार अपना कर दें जिन्हें कने बहुत अच्छी आमदनी भी कमा कर देन और इतना च एक जड़ा है सह है मधुमक्खी पालन का भी।
1: जी
0: तो किसान साथी दिखा मधुमक्खी पालन आज दे समय च रोज़गार का एक बहुत बड़ा साधन बनता जा रहा है। इससे शहद मोम और अन्य जड़े उत्पाद हैं सह प्राप्त होंगे जिन्हें बाजार च काफ़ी मांग रही है और बहुत अच्छी कीमतों पर जड़ा सह ये जड़े उत्पाद हैं सह बिकते भी हैं। घट लागत से शुरू होने वाला यह जड़ा व्यवसाय है सह ग्रामीण कने शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के वास्ते लाभदायक साबित हुआ करता है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल केसरो जी तो देखा तुहें दसी करते हे यहाँ आज जे कोई हमारे जेडे युवा है बेरोजगार है उन्हें कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है इतने घरे रह करी भी कि अपनी खेती बाड़ी सौगी जे है होर कई काम कार जे ऐसे कर सकते और इस वास्ते देखा हाँ दी सरकार भी सहयोग कर दी और नई नई योजना जी इसे अहाँ जेडे बेरोजगार युवा है अहाँ के किसान साथी उन्हें वास्ते चलाते जिंया तुहें गल करा दे मधुमक्खी पालन की। अगर आंदे बेरोजगार युवा अगर इस कम्मा करने में जुड़ दे और बिल्कुल प्रशिक्षण ले करी इस कम्मा जो कर दे शुरू कर दे तो जरूर जी ऐसे अपने आमदन जो बढ़ाई सकते।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। कहने दिखा युवा वर्ग कई तरीके ने मधुमक्खी पालन सीखी सकता है। पहले तो कृषि विज्ञान केंद्रा च आयोजित जोड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं जिन्हें भी तुह सीखी सकते हैं। सरकारी कृषि विभाग कने बागवानी विभाग द्वारा चलाए जा रहे कई सारे ऐसे कोर्स हैं जिन्हें जाकर भी तुह ये जोड़ा काम है सीखी सकते हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: इसके अलावा अनुभवी मधुमक्खी पालकों से बिसोगी रही करी तुह काम जोड़ा सह हौले हौले सीखी करी तुम एक व्यवसाय बनाई सकते हैं। और अजकल तो दिखा इंटरनेट जोड़ा ऐसे सारे वाली है फोन है यूट्यूब है वीडियो है बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स होंगे जिन्हें मदद करने भी तुहां नई तकनीक सीखी करी इस काम जो शुरू करी सकते हैं।
1: बोलने का तुहां दा ये मतलब है कि कोई भी अहां काम शुरू करना तो उस वास्ते जैसे एक मतलब जानकारी ले करी एक बिल्कुल मतलब प्रशिक्षण ले करी अगर अहें शुरू कर दे किसी भी काम जो तो जरूर उस विच जैसे अहें फायदा कमाई सकते।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल। कने किसान साथी दिखा मधुमक्खियों के बहुत सारे प्रकार होंगे पर तिना च कुछ एक प्रकार जड़े तिना जो हाँ पाली सकते हैं तिना के बारे में भी जानकारी होना बड़ा जरूरी है। तिना च एपिस सेराना इंडिका एक मक्खी है जिस जो तुह पाली सकते हैं। भारत च सब तो ज़्यादा पाली जाने वाली मधुमक्खी है ये स्थानीय वातावरण च आसानी कने ढली जाती है कने शहद उत्पादन बहुत अच्छा देती है। इसके अलावा गल की जाए तो एपिस मेलीफेरा ये भी विदेशी प्रजाति है पर शहद उत्पादन बहुत ज़्यादा करती है तो इस चु भी तुह पाली सकते हैं। इसके अलावा डैमर या फिर बिना डंक वाली मधुमक्खी ये छोटी जरूर होंगी है कने घट मात्रा च शहद दिंदी है लेकिन इसका शहद जड़ा है औषधीय गुणा के कारण काफ़ी मूल्यवान मनिया जाता है
1: जी।
0: कने अगली जड़ी किस्म ऐसा है रॉक वी यानी कि बड़ी जंगली मधुमक्खी है खुले स्थान च छत्ता बनाती है। इसका पालन सामान्य तौर पर नहीं किया जा सकता है क्यों कि इस जो नियंत्रित करना मुश्किल होंगे। इस वास्ते हाँ ये गलाना चाहेंगे कि जल भी तुम्हें काम शुरू करना है तो अपनी जड़ी संभाल ऐसे भी जरूर करनी है और सीखी के इस काम जो करना है
1: जी।
0: और इसके अलावा लिटिल बी यानी कि छोटी मधुमक्खी है छोटे छत्ते बनाती है कने घट शहद दिंदी है इस वास्ते इस जो भी

0: व्यावसायिक तौर पर पाई सकते हैं। तो भाई मधुमक्खी पालन ने ना सिर्फ लोगों की आय बढ़ती है बल्कि खेती च परागण की प्रक्रिया भी बेहतर होने ने फसलों का उत्पाद भी बढ़ता है। तो युवा वर्ग कने किसान इस जो अपनाई करी आत्मनिर्भर बनी सकते हैं कने अपने परिवार की आर्थिकी स्थिति जो होर मजबूत करी सकते हैं।
1: बिल्कुल केसरो जी, तुम्हें बड़ी अच्छी जानकारी दिखा दीती है हमें किसान साथियों जो, और जरूर आंद जेड़ा खासकर युवा वर्ग आ से जरूर इसते जे ऐसे लाभ लेंगा। तो देखो हूँ अहाँ अपने किसान साथियों जो होर जानकारी देनी, पर उससे पहले जे ऐसे अहाँ एक लोकगीत
0: जी बिल्कुल संजा का बेला है तो हाँ जरूर एक लोक भजन जड़ा है जरूर अपने किसान भाइयों कने साझा करना है। तो चलते सुनते ने प्यारा दिया लोक भजन।

0: किसान साथियों, संझा दा बेला है, कन्नै दिक्खा बड़ा ही प्यारा, लोग गीत बोली सकदे, लोग भजन बोली सकदे। हां तुहानूं जो सुनाया है और बोलदे ना कि ब्याह दा इक लोक गीत था, इस जेहड़ा ऐसा बरात चली उठी, कन्नै जेहड़ी लाड़ी है मतलब कि जेहड़ी कुड़ी थी, सै जेहड़ी ऐ अपनी माऊ दी गोदा च बैठी रहिंदी ऐ, सै उठदी नहीं है। भई पुराने रवाजां दा समय था, उस टाइम धियां दा ब्याह हुंदा हा तां सै जांदियां नहीं थियां, तां भी तुसीं समझा दे कि भई तुझे हुण जाना पौना, कन्नै विदाई लैना पौनी है। तो ऐसा ही कुछ जड़ा है लोक गीत जड़ा है तुहां सुनिया, और ऐसे लोक गीत जड़े से बड़े ही मुश्किल कने सुनने जो मिलते हैं, और यही एक माध्यम रहिंदा है साड़ा टियाला, जिसके माध्यम ने तुहां इन्हां गीतां कने मिली जुली के रहिंदे ने। तो किसान भाई हुण दिखा इस गीत दे बाद हुण अगे बढ़ना है जानकारियां दे पासे, और एक बड़ी ही जरूरी जानकारी जड़ी है साडे किसान मित्र होरां ने कीती हो कुसी कने, किसान भाई कने गलबात
1: प्रकाश होरां ने,
0: हाँ जी, क्या गलबात कीती हो, क्या नहीं कीती हो, और क्या तिना जानकारी दित्ती हो, इस वास्ते चलदे ने कने सुनदे ने जानकारी।
2: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी च मैं किसान मित्र कने मेरे सोगी अज जड़े से जुड़ा करदे ने एक उन्नत किसान जिला चंबा भरमौर ते, ओवा करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम जी।
2: जी अपना नाम दसा।
3: मेरा नाम प्रकाश है जी, मैं जिला चंबा भरमौर तहसील गांव गरोला दा रहने वाला है।
2: ता प्रकाश जी तुहां खेतीबाड़ी करदे?
3: खेतीबाड़ी करदे जी हां, ते च छलियां लांदे ने।
2: हां जी।
3: कणक ज्यादा कर हां बागवानी करा दे, जिस च सेब लगदा है।
2: हां जी।
3: अखरोट हुंदा है, ज्यादा कर यही साडा काम है।
2: ता ओथू गरोला भरमौर तुहां वल किन्नी की जमीन है जिस च तो?
3: मुंजल इस वक्त 8-9 करनाल जमीन है।
2: अच्छा।
3: ते च मैं कोई 4 करनाल विच सेब दा बगीचा मेरा।
2: हां जी।
3: बाकी यहां कणक छलियां कने आलू वगैरा।
2: अच्छा, लगांदे ने?
3: हां, कुछ इक च मिर्चा लगांदे, सौड़ूड़ जेहड़े बने ने।
2: हां जी। अजकल क्या क्या लगाया तुहां?
3: अजकल जी कणक हाँ बाई कर आयो, जेड़े कि अप्रैल मई च तैयार होनी है। 6 महीने साड़ी कणक दा फसल चलती है।
2: अच्छा।
3: क्योंकि बर्फ पई जांदा, बर्फ पई जांदा तां दबोई जांदी साड़ी कणक।
2: हां जी।
3: अप्रैल मई च साड़ी कणक जेहड़ी है तैयार होंदी है।
2: अच्छा।
3: साल दीआं 3 फसलां होंदीआं साड़े भरमौर विच।
2: हां जी।
3: छलियां, कणक कने माह, 3 फसलां साल च निकलदीआं ने साड़ी।
2: अच्छा। माह सोगी राजमा?
3: माह सोगी हां, छलियां सोगी हां, माह भी बनदे, राजमा भी बनदे।
2: अच्छा।
3: इक माह दी खेती जेहड़ी हां सर लग कर।
2: ओ तो जल तुहां खेती करदे हैं ना, तो खेतीबाड़ी च तुहां दे बीज तां अपने हुंदे होणे ना?
3: बीज साडे कुल मिलाई कर सारे अपने घर दे बीज हुंदे।
2: बढ़िया, जिसी बोलदे ने इक बांका तरीका की अपना घरे दा बीज।
3: जी जी।
2: छली कौन बांधे तुहां? तो लाल की चिट्टी हुंदी?
3: छली दोनों चीजां हुंदियां, लाल भी बांधे कुते चिट्टी भी बांधे।
2: देसी छली हुंदी?
3: देसी छली हुंदी जी।
2: अच्छा प्रकाश जी, तो उत्थों तां खेत तां जियां सीढ़ी नुमा हल्के हल्के छोटी छोटियां पट्टियां हुंदियां,
3: छोटियां पट्टियां होणियां, करके काफी उथड़े हुंदे, मतलब
2: बीड़ा
3: काफी बड़ियां हुंदियां, छोटी छोटी पट्टियां हुंदियां, बैल भी साढ़े छोटे छोटे देसी हुंदे बिल्कुल, तिन्हां कन्नै हां जुताई करदे।
2: हां, यानी कि हां जिहड़ा सै इह बोली सकदे ने कि जितना सै अगर खेतर नहीं है तां उस ते 3-4 गुणा ते बीड़ ही होणी है।
3: 3-4 गुणा बीड़ हुंदी।
2: तां हल्के हल्के बैल रखे हुंदे
3: उत्थों? हल्के हल्के छोटे छोटे देसी बैल हुंदे साढ़े।
2: हां जी।
3: ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਤਾਈ ਕਰਦੇ, ਪਥਰੀਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ।
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਖਾਸ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਸੋਗੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਖਾਲੀ ਬੈਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ।
2: ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਤਾਂ ਹਲ ਵੀ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ, ਦੇਸੀ ਹਲ?
3: ਹਲ ਵੀ ਦੇਸੀ ਹਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ,
2: ਕੁੱਥੀ
3: ਕੁੱਥੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਸੀ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ।
2: ਤਾਂ ਬੈਲਾਂ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੋ?
3: ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਲਾਂ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੀ।
2: ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਲੀ ਕੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ?
3: ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲੀ ਕਰੀ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਮੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਕਾਂਗੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
2: ਅੱਛਾ।
3: ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ।
2: ਅੱਛਾ।
3: ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੋਗੀਆਂ ਮਿਲੀ ਕਰੀ।
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਆਲ ਉਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ।
2: ਇਸ ਤੇ ਸੋਗੀ ਜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਆ ਬਗੀਚਾ ਇਹ?
3: ਸੇਬ ਬੂਟੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਇਓ।
2: ਅੱਛਾ।
3: ਫਸਲ ਦਿਆ ਦਾ ਹੁਣ?
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤਿਸ 'ਚ ਮੈਲ ਪਾਉਂਦੇ
2: ਨੇ,
3: ਸਪਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਸਪਰੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਤਰ ਉਂਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਸਨੇ ਕਰਾ ਦੇ।
2: ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ?
3: ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾ ਦੇ ਸੇਬ ਦੀ। ਹਾਂ
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਤਾਂ ਤਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ।
2: ਅੱਛਾ।
3: ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇ ਕਰਦੇ ਤੀ ਨਾ ਸੇਬਾ ਸਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ।
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ।
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਕਲਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆਈ ਜਾਂਦਾ।
2: ਹਾਂਜੀ।
3: ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੇਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਾਉਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਬ ਚੱਲਾ ਦਾ।
2: ਹਾਂ, ਦੇਖਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗਵਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਅਗਾਂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦੇਖਾ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਹਿ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੋਲ ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਹਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਬਗੀਚਾ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
3: 5 साल बाद तैयार हो जाता, क्योंकि अजकल की जी हो जी इसे 2-2.5-3 साल बाद भी फल देना शुरू हो जाती।
2: अच्छा।
3: पर साड़ा जो पहले का सेब था,
2: हाँ जी,
3: 5 साल के बाद ही फसल देना शुरू करता।
2: अच्छा, तो बूटे उतो मिली ही है सेब बूटे
3: जी समझो ओल्टीकल्चर से उतो ही मिली जाते हैं।
2: हाँ जी,
3: सबसिडी भी होंगी है बूटे कुछ भी।
2: हाँ जी,
3: उतो ही ओल्टीकल्चर मिली जाती।
2: बाकी क्या बगीचे च पूरे साले च क्या काम कार करना पौंदा?
3: बगीचे च सारे तो पहले बैड खोने जी बगीचे के, हर बूटे थले बैड खोना है,
2: तोलीये बनाने
3: उसके बाद उन्होंने मैल पाना जी, मैल पाई के छड़ देना, फिर जल सीजन ऑफ हो जाना तो कटिंग होनी है बूटे की।
2: हाँ जी,
3: कटिंग करी करी हाँ, एक तेले स्प्रे होंगी, तेले स्प्रे करनी है, उसके बाद छड़ देना, फिर अप्रैल से पहले जल पत्ता आई जाना है तो स्प्रे करनी है, पर स्प्रे हाँ दूजे नहीं करते, हाँ देसी आप मूत्र उत्र मिलाई करी
2: हाँ।
3: स्प्रे करते हैं।
2: जेड़ा तुहां दस्सिया तेल कौन तेल होंदा है?
3: तेल जी साड़ा TSO है एक तेल।
2: हाँ जी,
3: जेड़ा साड़े उस च है कोई बूटा है एक ना।
2: हाँ जी,
3: उदा तेल, पर आ तेल इनके उत्पन्न नहीं कर सकते, होल्टीकल्चर से एग्रीकल्चर वाले ही है।
2: अगर जी सीधे तौर पर जी ऐसा भी कर लेंगे कुछ बारी जी व्यापारी बेचीता पूरा बगीचा,
3: व्यापारी सेब दे फूल आने के बाद व्यापारी आ जाता है।
2: हाँ जी,
3: तो जो बेचना चाहता है फूल आने के बाद ही बेची।
2: अच्छा, यानी कि जल कुर पाँगा कुरे पर भी बिकी जाता?
3: कुरे पर जब फूल निकलिया तो व्यापारी आ जाता से बेची जाता, कुछ एक जो फार्मर से आपू नहीं ना चाहते
2: ना,
3: आपू नहीं देनी तो फिर बाहर के व्यापारी होंगे से सारे कुरे पर ही ले लेंगे।
2: तो जी कि कुरे पर तो फिर यह है ना कि नफा नुकसान जो भी होगा है व्यापारी का है ना,
3: वो तो जी व्यापार भी तो घाटा वाधा जो व्यापारी का ही होना।
2: अच्छा प्रकाश जी, जहाँ हम चलते अनाज वाली फसलों भाए तो जी अगर उतु चंबे के जेडे राजमान कहना जी तो माह दसे हैं तो तिना का एक जो तिना का स्वाद है बड़ा एक निराला है।
3: निराला सब जी।
2: हाँ जी,
3: क्योंकि यहाँ देसी ही खाद पानी कोई इनके यूरिया शूरिया कोई पूछ नहीं पाते, इस वजह ने साड़ा देसी राजमा जड़ा से फेमस है।
2: तो राजमा क्या भाव मिलते हो तू देसी?
3: इस वक्त जी 200 या 250 रुपये किलो चले ब्रह्मौर ते।
2: हाँ जी, राजमा
3: हाँ जी माह जड़ा से 300 रुपये मतलब 1000 रुपये उपर लेकर चलता माह।
2: अब जी छलियां लैनी हो तो
3: छलियां जी 27 रुपये।
2: अच्छा, उतु चौल कौन दे उगाते तो?
3: धान तो उतु बिल्कुल नहीं होंगे साढ़े।
2: हाँ जी,
3: क्योंकि समझो पानी लगने वाली कोई जमीन नहीं है।
2: हाँ जी,
3: कुदरती बरखा होनी है उसी ने साड़ियाँ फसल चलनिया।
2: हाँ जी,
3: पर इनके पहले होनी भी साइज थोड़ा है, पर पहले जमाने चा चौल का होंगे साड़ा कुंदी साड़ी चना देसी चना होंगी उसी ही हाँ चौल मनी कर चलते उदा ही हाँ पत बनाते थे, अजकल वो थोड़ी थोड़ी लुप्त तो हुई है।
2: हाँ,
3: तो हूँ चौल इतों से जाता या डीपू का चौल जरा उसी खा दें।
2: जो दसिया तुम जो ग्रां या ग्रोला सड़क पक्खे ही है या खुद पैदल भी है? थोड़ा बहुत
3: पैदल है, 1-1.5 किलोमीटर पैदल है, पर अजकल तो माड़ी मोटी सड़क बनी गई सारे करीब ने।
2: अच्छा,
3: पर अलदिकर साड़ा ग्रां जेड़ा सो सड़कां ने जुड़िया नहीं।
2: अच्छा अच्छा, प्रकाश जी दा जियां भरमौर जियां तुहां दस्सिया कि तुहां 6 महीने उत्थों रहिंदे कने 6 महीने इत्थों रहिंदे ने, तां इत्थों भी तुहां घर बणायो कांगड़े?
3: हाँ, कांगड़े भी कर जी साढ़े, कांगड़े खाली कर ही है ना, जमीन तो हाँ वो नहीं क्योंकि जमीन है ही नहीं साढ़े।
2: हाँ जी,
3: पर घर है माड़ा मोटा स्वाड़ू लाड़ू ऐसे करते हैं, बाकी कुछ नहीं है साढ़े। बाकी हाँ 6 महीने दरवाजा जंदरा लगा चली आते हैं।
2: हाँ जी,
3: कोई ऐसी वैसी कोई इनके
2: हाँ देखा बिल्कुल शांति भरे
3: इलाका जी, जगह तो खुला दरवाजा छड़ी हूँ तभी कोई अंदर बनने होने वाला नहीं है।
2: अच्छा जी, जल उतु बर्फ खा पी जाती है या बर्फ पी जाती है तो इससे पहले क्या अपना जियाँ पशुआ का जियाँ चारा हो या अपना राशन पानी की
3: हाँ जी पशुओं वास्ते 3-4-5 महीने जल बर्फ होनी जी तिकर।
2: हाँ जी,
3: उदा कट्ठा घा पट्ठा जड़ा भी है कट्ठा कर लेना।
2: हाँ जी,
3: लकड़ी अपने वास्ते जड़ी 3-4 महीने जो फूकने वास्ते लकड़ी चाहिए।
2: हाँ जी,
3: से कट्ठी करनी है।
2: हाँ जी,
3: डिपू च राशन समझो 5-5 महीने का कट्ठा राशन मिली जाता डिपू च।
2: हाँ जी,
3: से हाँ कट्ठा कर लेना है।
2: हाँ जी,
3: यातायात दे साढ़े कोई साधन सारे बंद हो जाते हैं।
2: हाँ जी,
3: तो जड़ा भी समान है साढ़ा से 5-6 महीने दियाँ हाँ कट्ठा करी करी रखना पौंदा समझो। हाँ, बर्फबारी हो जाती तो 10-15 दिन तक कुदरती घर के बाहर नहीं निकली होंगे।
2: हाँ जी,
3: उसके बाद थोड़ा थोड़ा सारे मिली करी 6-7 फुट बर्फ पी जाती।
2: हाँ जी,
3: तो सारे मिलते हैं मिली करी।

0: रस्ता निकालते रस्ता साढ़े तीन तीन मंजिल मकान होंगे, एक मंजिल जो सारा बर्फे च दबी जाता है
1: अच्छा
0: तो तीसरी अह उपर से ही तीजी दूजी मंजिल से ही सीढ़ियां बनाई करी अंदर ही रहते हैं।
1: अच्छा
0: तीजी जी लास्ट मंजिल होंगी साड़ी उस आम डंगरे रखते हैं अपने कने तिना का पट्ठा पाने दी अह उपर से भी इनके मतलब जाने का साधन होंगे
1: हाँ
0: थले तो अह फिर रस्ता बनाना पौधा सन
1: जी गोहा वगैरह फिर कट्ठा ही दो महीने बाद
0: वगैरह अंदर ही अहमद एक किस्म कट्ठा करके मलाया लगा लेंगे
1: हाँ जी
0: फिर जलू बर्फ गलना है आस्ते बाहर निकालना
1: बिच जियां कोई ऐसा हो गया जियां बर्फबारी तो जियां कोई अगर बीमारी शबीर तो बड़ा मुश्किल हो जाता
0: होना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहले तो हुन तो चलो माड़ा मोटा गवर्नमेंट ने रस्ते उसे बनाना शुरू करी नहीं तो पहले तो समझो 5-5, 6-6 किलोमीटर पालकी टाइप बिच पाई करी मरीज नीना पौंदा हा
1: बाकी जियां स्कूलां सकालां दा क्या
0: स्कूलां दा जी जनवरी फरवरी च स्कूल बंद होंदे ने
1: हां जी
0: मार्च बिच लगदे ने
1: हां जी
0: हुन तो थोड़ा चेंज हो गया मौसम नहीं तो मार्च बिच भी लगने फिर बंद हो जाने लगने फिर बंद क्योंकि 3-4 महीने तो बर्फबारी ठीक ठाक
1: हाँ जी
0: तो सारा जनवरी फरवरी स्कूलें छुट्टियां होंगे मार्च बच्चे लगता था मार्च भी बर्फ जी पी जाना तो फिर बंद ही करना पौधे
1: और तुहू भरमौर तुहे इलाके क्या क्या और जी जड़ी बूटियां क्या क्या होंगे
0: जड़ी बूटियां जी साढ़े इलाके च करीबन एक गुच्छी टाइप है
1: हाँ जी
0: जिसी अस चमकनू बोलते अपनी देसी भाषा च
1: अच्छा क्या होंगी गुच्छी कने क्या कमा होंगी
0: ये गुच्छी जी दवाई भी दे कमे होंगी बोलते
1: हाँ जी
0: साढ़े दे तो उतो दे सस्ते भाए ले जाते पर अगे जाई करी बोलते 20-25-30-40 हज़ार रुपये किन्ना किलो बिकती है।
1: अच्छा कुस टाइम में निकलती है कुस महीने
0: ये निकलनी है जी हुण मार्च के बाद अप्रैल मार्च अप्रैल बिच
1: हाँ जी
0: जलू इनके अंबर गड़कना शुरू हो जाए तो जमीन से निकलती है।
1: अच्छा जी यानी कि नारे कने टटमोर निकलते
0: हैं जितनी जमीन से निकलनी
1: है। अच्छा
0: तो साड़ा सभी इनकी एक रोजगार है कि तां बंदे रोटी बनाई करी प्यागा 4 बजे जंगल चली पौंदे ने
1: हाँ जी
0: गुच्छियां उच्छियां वगैरह तो अपना फिर धूप होंदा साड़ा एक
1: हाँ जी
0: तूप है
1: हाँ जी
0: सब इनकी जंगल च निकलता है
1: हाँ जी
0: ब्रह्मी है
1: हाँ जी
0: मतलब 3-4 चीजा ऐसी जड़िया सानू रोजगार तिस्ते मिली जाता है।
1: जियां तुहां दस्सिया कि जियां ए तूप होई है या ब्रह्मी है या जड़ी जड़ी बूटी है या जियां गुच्छी दस्सी है तुहां ता इसी उतो दे जड़े स्थानीय निवासी है सही उखाड़दे होने या कोई बाहरे तो नहीं आई जांदे जियां
0: स्थानीय निवासी उखाड़दे ने
1: हाँ जी
0: पर जेड़ा व्यापार बेचना अगे ते फिर बाहरले बंदे जिन्हां वाल तिदी मान्यता है
1: हां
0: तिसी देना पौंदा ता सह ले करी हुंदा है स्थानीय वासी ते उन्हां दे तां खाली दिहाड़ी लगदी ते इन्हां दी
1: हां जी
0: पर जेड़ा लई करी आंदा उसी ओ सही पैसे कमांदा उस च
1: बकरियां वगैरह नहीं पालियां भेड़ां भुड्डां
0: भेड़ां बकरियां जी हुण आ तां नहीं पालियां पर साढ़े स्याणे स्याणे भेड़ां बकरियां पाली हियां
1: जी। राकेश जी तां तुहां उत्थों दे जल्लू को तुहां जो कोई अपने खेतीबाड़ी दे कम्मे च जियां कोई परेशानी वगैरह आउंदी है तां तुहां कुतों संपर्क मनांदे तुहां
0: साढ़े जी अपने पिंड च है होलीकल्चर एग्रीकल्चर दा दफ्तर है
1: हां जी
0: तिथों दे वी साढ़ा थोड़ा माड़ा मोटा जानकारी तिथों दे आई जांदी है
1: हां जी
0: फिर साढ़े ग्रां च वी कैंप लगदे रहिंदे ने इहदे
1: हां जी
0: जानकारियां दिंदे रहिंदे ने।
1: प्रकाश जी आहां दी जिहड़ी युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहंगे
0: युवा पीढ़ी में यही संदेश देना चाहुंदा कि खेतीबाड़ी जिहड़ी है से सारे ते अच्छी चीज है सारे युवा युवा जिहड़े ने नौकरी दे पिछे दौड़दे रहिंदे कने खेतीबाड़ी जिहड़े ने आस्ते आस्ते भुली जा दे से तो मैं युवा पीढ़ी इतना ही बोलना चाहुंदा कि तू अपने खेतीबाड़ी जो ज्यादा बढ़ावा दे।
1: तां प्रकाश जी तुहां अपने जिला चंबा भरमौर दे जिहड़े खेतीबाड़ी दे अनुभव आहां कन्ने सांझा कीते अपना कीमती समय तुहां आहां जो दित्ता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान साथियों दिखा टियाले के माध्यम ने तुहां सुनी है जानकारी और बड़ी अच्छी जानकारी प्रकाश और उन्होंने सानू दित्ती है और इन्हां जानकारियां जो जरूर गठी बनना चाहिए और इन्हां दा लाभ भी लेना चाहिए है। तो हरिया जी हूँ इस जानकारी के बाद फिर तहां चलना लोक जानकार के पास और सुनना और सुनाना एक प्यारा दिया लोक गीत।
3: बिल्कुल बिल्कुल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ीं। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग और

0: वेतन वृद्धि की मांग कर रहे सैब सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 47 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। हालांकि नगर परिषद व नगर पंचायतों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं करवाए गए, लेकिन फिर भी कांग्रेस व भाजपा दोनों ही प्रमुख दल इन चुनावों में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि कुल 47 नगर निकायों में से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने 32 निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जीत राज्य सरकार की कार्यशैली का आधार है और समाज के हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में दावा किया कि भाजपा ने 47 में से 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि 25 नगर परिषदों में से 18 और 22 नगर पंचायतों में से 12 पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता का कांग्रेस सरकार से भरोसा उठ चुका है।
1: 25 नगर परिषद में से 18 पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते और 22 नगर पंचायत में से 12 पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार जीते। पार्टी के सिंबल पर भले ही ये चुनाव नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश इस बात को लेकर के, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है उसको मालूम पड़ जाता है कि किस पार्टी से संबंध रखता है। पिछले कल रात से बहुत ज्यादा परेशानी में सरकार है। प्रभाव का इस्तेमाल करने की अगर वो कोशिश करेंगे उसमें भी वो एक्सपोज होंगे।
0: शहरी निकायों के चुनाव परिणामों के बाद भाजपा व कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि शहरी निकायों में कांग्रेस पार्टी को करारी हार मिली है। उन्होंने कहा कि इन चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस जीत के लिए भाजपा के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। दूसरी ओर कांग्रेस संगठन के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस ने 47 में से 31 नगर परिषद व नगर पंचायतों में जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि सत्ता के इस सेमीफाइनल में कांग्रेस पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा है।
2: नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को एक तरफा बहुमत मिला है। ऐसे बहुत सारे जिला है जहां कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। चंबा जिला के तीनों नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती है। जिला कांगड़ा के अंदर भी 6 नगर परिषद और नगर पंचायतों का चुनाव हुआ, जिसमें 6 की 6 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है। 31 नगर पंचायत और नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी अपना चेयरमैन बनाने जा रही है, ये बिल्कुल तय।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज तिरुवनंतपुरम में केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने वीडी सतीशन को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केरलम विकास, सामाजिक न्याय व सुशासन की नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल को कौशल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने आज शिमला में विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु उद्यम और स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने बताया कि विद्यार्थियों के ज्ञान संवर्धन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों व कृषि महाविद्यालयों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठा रही है और सभी राज्यों में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज नई दिल्ली में बताया कि पिछले लगभग 2.5 महीने से पश्चिमी एशिया संकट जारी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी अभी भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इसके कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के दामों में वृद्धि हुई है।
3: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है, लेकिन

0: कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शिक्षा और इतिहास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। इस मौके पर धर्मशाला स्थित कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कांगड़ा की SDM शिल्पी बेगटा ने इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान देश भर से आए कई जाने माने कलाकारों ने लगभग 50 कलाकृतियां प्रदर्शित की हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को हर कलाकार की रचनात्मकता व कला देखने को मिल रही है।
2: मेरा नाम मनप्रीत है, मैं लुधियाना से आई हूँ। टोटल आई थिंक मोर देन 45 पेंटिंग्स हैं सबकी मिला के, और सबका अलग अलग काम है, अलग अलग कहते ना, हर किसी का अपना अलग हाथ होता है, अपना अलग अलग क्रिएटिविटी, अलग अलग काम है, और सबने बहुत मन से काम किया, बहुत एफर्ट दिए हैं अपना यहाँ पे लाके लगाने के लिए।
1: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए और सभी को बिना थके लगातार काम करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदायों और लोगों में जज्बा इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
3: भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: राजधानी शिमला में सहब सोसाइटी से जुड़े सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। इस हड़ताल के कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने शिमला में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सहब सोसाइटी कर्मचारी यूनियन के उपाध्यक्ष अमित भाटिया ने कहा कि सोसाइटी के लगभग 800 कर्मचारी 10% वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी।
4: हमारे कर्मचारी जो अपने हक अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, और ये SMA चलो DC साहब ने लगा दिया, मगर DC साहब को हमने भी कई बार मांग पत्र दिया। DC साहब ने आज तक 4 साल में कोई भी वार्तालाप हमारे निगम प्रशासन से नहीं करवाई है। साफ साफ कर्मचारियों के विरुद्ध में पूरा प्रशासन बैठा है। अभी तो हमारी कोई बात प्रशासन से हमारे को कोई कॉल नहीं आई है। अभी जब तक कॉल नहीं आती है तब तक हमारी स्ट्राइक है जो कंटिन्यू ही जाएगी।
1: केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में आज एक व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, भीषण गर्मी के समय धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फलों तथा इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर बल दिया गया है। लोगों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के खतरे के लक्षणों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, उच्च तापमान, निर्जलीकरण, दौरे और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से मुलाकात की। इस दौरान नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पारंपरिक चिकित्सा, AI आधारित जन स्वास्थ्य नवाचारों और TB उन्मूलन की दिशा में निरंतर प्रयासों जैसे प्रमुख कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी। कांग्रेस व भाजपा दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे के साथ मना रहे हैं जश्न। कांग्रेस ने 47 में से 32 और भाजपा ने 30 शहरी निकायों पर जीत हासिल करने का किया दावा। केंद्र सरकार ने कहा देश भर में पेट्रोल, डीजल व LPG की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम।

0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर कांगड़ा कला संग्रहालय में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी। देश भर से अनेक कलाकार ले रहे हैं भाग और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे। सेहत सोसाइटी के 800 कर्मचारियों की हड़ताल से राजधानी शिमला में चरमराई सफाई व्यवस्था। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के पहले प्रस्तुति सतिंदर सरताज की आवाज में ये पंजाबी गीत।
2: Congratulations on your recent historic.
3: And I'm leaving. Thank you very much.

0: अभी आप सुन रहे थे फाल्गुनी पाठक का गाया हुआ ये गीत। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी। आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
3: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी।
1: छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
2: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
3: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
1: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
2: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
1: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
2: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: just ₹6.70 lakh.
1: Yes, ₹6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your prongs today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.72 lakhs.
1: Yes, ₹9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just ₹8,999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
3: पहली कार, पहली आजादी, पहली खुशी, अब और भी सुरक्षित।
4: नई मारुति सुजुकी ऑल्टो केडन, अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ, ESP, हिल होल्ड और रिवर्स पार्किंग सेंसर और अरीना सेफ्टी शील्ड।
3: अब पाइए स्पेशल ऑफर्स अप टू 52,100, साथ ही 3 साल या 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी, इजी EMI, बेस्ट इन क्लास माइलेज ऑन पेट्रोल 24.9 किलोमीटर पर लीटर एंड CNG 33.40 पर किलोमीटर। आज ही अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना विजिट करें। TNC अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

कविता कृष्णमूर्ति को अभी आप सुन रहे थे अग्निपंख फिल्म से, और ये थी देशभक्ति गीत कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं जमी फिल्म से, ये देशभक्ति गीत आवाज़ें हैं के और शान की।

0: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 News@9 रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर

0: हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय
2: सांस्कृतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
4: भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
3: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
4: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष

दोस्तों, अजय गोगाबले और अतुल गोगाबले भारतीय संगीत जगत की एक बेहद लोकप्रिय संगीतकार जोड़ी है। ये दोनों सगे भाई हैं और अपनी दमदार, ऊर्जावान और भावपूर्ण धुनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से मराठी और हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन संगीत रचनाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। अजय और अतुल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिले में राजगुरुनगर में हुआ था। अतुल का जन्म 11 सितंबर 1974 को और उनके छोटे भाई अजय का जन्म 21 अगस्त 1976 को हुआ था। उनके पिता अशोक गोगाबले राजस्व विभाग में नौकरी करते थे, जिसके कारण बार बार उनका तबादला होता रहता था। इस वजह से उन्हें महाराष्ट्र के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने का मौका मिला, जिससे उन्हें भारतीय लोक संगीत और वहां की विविध संस्कृतियों को समझने और गहराई से परखने का अनुभव मिला।

0: रस
1: कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं पीके फिल्म से ये प्यारा सा गीत।
2: बस चार कदम
1: उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ

बचपन से ही संगीत में गहरी रुचि होने के बावजूद शुरुआती दिनों में उनके पास कोई औपचारिक प्रशिक्षण या महंगे वाद्य यंत्र नहीं थे। उन्होंने घर की उपलब्ध वस्तुओं और सीमित संसाधनों से ही अपने संगीत कौशल को निखारा। उन्होंने व्यावसायिक जिंगल्स और विज्ञापनों के लिए संगीत बनाकर अपने करियर की शुरुआत की। उनका पहला बड़ा ब्रेक गैर फिल्मी एल्बम विश्व विनायक से मिला, जिसमें पारंपरिक भजनों और स्त्रोतों को एक नए संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया। ये एल्बम बेहद सफल रहा।

2004 की फिल्म गायब से उन्होंने हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया। 2012 में आई फिल्म अग्निपथ के गानों ने उन्हें बॉलीवुड में अपार सफलता और पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने सिंगम, बोल बच्चन, पी के धड़क, सुपर 30 और स्त्री जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार संगीत दिया।

कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं संगीतकार अजय अतुल के संगीतबद्ध किए गए कुछ चुनिंदा गीत। इनके संगीत की खास बात यह है कि यह शास्त्रीयता और आधुनिकता का सुंदर संगम प्रस्तुत करता है इनका संगीत। और अतुल अजी को अपने उत्कृष्ट संगीत के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि अगर प्रतिभा के साथ निरंतर अभ्यास और समर्पण हो तो सफलता अवश्य मिलती है। अतुल अजय की जीवन यात्रा हमें यह प्रेरणा देती है कि अपनी कला पर विश्वास रखें और मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अपने रेडियो दोस्त रेनु मनकोटिया को दीजिए अनुमति। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हिमाचली गीत लोक गीत। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं ऋषि कुमार के गाए इस लोक गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे कर्नेल राणा की आवाज़ में ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं वर्षा कटोच का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे निमो चौधरी का गाया हुआ लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं नसीम बाला का गाया ये लोकगीत।

विशाल और पठानिया के गाए इसी लोकगीत के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, रात्रि के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके पसंद गीत हमारे। जी हाँ, आज ये कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और उम्मीद करेंगे कि जो भी हमने ये तराने आपके लिए रखे हैं आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ।

प्रतिज्ञा फिल्म से अभी ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी का गाया हुआ। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे आनंद बख्शी के। आसपास इस फिल्म में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को एक बार फिर से संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल आनंद बख्शी के।

जीवन मृत्यु इस फिल्म में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को। संगीत यह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश और लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत कभी कभी फिल्म से। फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कश्मीर के कली इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

मृत्युदाता इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर। आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज, अलका याग्निक और विनोद राठौर की।

फिल्मी तराने अभी आप सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। यूं ही जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ गुनगुनाते रहिए।

कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म से। आवाजें हैं बप्पी लहरी और आशा भोसले की।

आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।